एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान

0: है, कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबूधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं। चिंतन। संत हमेशा विचार करना सिखाते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों को सही विचार करना आता नहीं है। संत अपने हृदय का अनुभव देते हैं। संत अपने जीवन का अनुभव बांटते हैं। संत कबीर कहते हैं कि मैं कहता आंखन की देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही मैं कहता हूँ। एक संत के हृदय का अनुभव ज्योति द्वीप है, वो मणिद्वीप है, जो संत ही हमें सही विचार करना सिखाते हैं। जिसे सही विचार करना आ जाता है, उसकी जीवनी शक्ति सही दिशा में बहने लगती है।

भगवान की स्मृति से बढ़कर भगवान की प्रसन्नता का कोई हेतु नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर सांस प्रभु को पुकारता रहे, हर पल, हर क्षण, हर काम करता हुआ प्रभु की याद आती रहे।

जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक पाता, वैसे ही भगवद आनंद के सामने ये विषय आनंद टिक नहीं सकता।

जैसे समुद्र के उफान को तटवर्ती क्षेत्र रोक लेता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे सर्व दुखों को हर लेती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो

गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 होने को हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरीले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओ, रोजाना सुबह 7:10 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग प्रसारित किया जाता है सुबह 7:40 पर और 8:30 पर सुनिएगा गाने सुहाने। 9 बजे का समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गीतों का कारवां, पहाड़ों के सुर, हिमाचली गीतों व लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। दिन में 12 बजे सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी। हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज बात करेंगे स्पोर्ट्स वीट्स पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। मौजा ग्राइंदिया कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और खेतीबाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:10 पर।

आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। अब से कुछ ही देर में यानी 6:55 पर संस्कृत में समाचार, सुबह 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात्रि 10:00 उपशास्त्रीय संगीत, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
2: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
1: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing, in which the defense partnership also plays an important role. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said,

0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोतों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में सुबह सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ नर्मदा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। जिन्हें एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बेकार है, क्योंकि शिकायत वहां की जाती है जहां समझ और संवेदना जिंदा हो। हर किसी से उम्मीद रखना अपने दिल को थकाना है, बेहतर है चुप रहकर आगे बढ़ना सीखें।

तो श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुबह सुहानी कार्यक्रम में। तो बात करते हैं कार्यक्रम में आज विशेष पर, क्या कुछ खास रहा इतिहास में आज के दिन। तो आपको बता दें कि 2004 में जॉन नेग्रोपोटे इराक में अमेरिका के पहले राजदूत बने थे। अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी की मान्यता दी गई थी आज ही के दिन 2005 में। और 2006 में फिलीपींस में मौत की सजा समाप्त कर दी गई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था आज ही के दिन 2008 में। भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का जन्म 1937 में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका अनिता देसाई का जन्म आज ही के दिन 1937 को हुआ था। वे एक प्रख्यात लेखिका थी। उनका नाम विश्व में अंग्रेजी साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है। उपन्यासकार किरण देसाई इनकी पुत्री हैं। भारत सरकार ने अनीता देसाई को पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अनीता देसाई का पहला उपन्यास क्राई द पीकॉक 1963 में प्रकाशित हुआ था। इसके साथ ही उन्हें बुकर पुरस्कार के लिए 3 बार अंतिम सूची में चयनित किया जा चुका है। अब लेते

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम बात कर रहे हैं आज के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं पर। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 1897 को हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। ओंकारनाथ के दादा महाशंकर जी और पिता गौरीशंकर जी नाना साहब पेशवा की सेना के वीर योद्धा थे। उनके पिता का संपर्क अलोनी बाबा के नाम से विख्यात

एक योगी से हुआ। इन महात्मा से दीक्षा लेने के बाद वे गौरी शंकर के परिवार की दिशा ही बदल गई। वे प्रणव साधना अर्थात ओंकार के ध्यान में रहने लगे। तभी 24 जून 1897 को उनकी चौथी संतान ने जन्म लिया और ओंकार भक्त पिता ने पुत्र का नाम ओंकारनाथ रख दिया। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की कालजयी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना है वंदे मातरम। वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये अमर रचना स्वतंत्र भारत के प्रथम सूर्योदय पर पंडित जी के स्वरों से अलंकृत होकर रेडियो से प्रसारित हुई थी। आगे चलकर वंदे मातरम गीत के आरंभिक दो अंतरों को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के समकक्ष मान्यता प्रदान की थी। 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 पर आकाशवाणी से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का राग देश में निबद्ध वंदे मातरम के गायन का सजीव प्रसारण हुआ था। आजादी की सुहानी सुबह में देशवासियों के कानों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूकने में वंदे मातरम की भूमिका अविस्मरणीय थी। ओंकारनाथ जी ने पूरा गीत स्टूडियो में खड़े होकर गाया था, अर्थात उन्होंने इसे राष्ट्रगीत के तौर पर पूरा सम्मान दिया था। इस प्रसारण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का ये गीत द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में अभी भी मौजूद है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मार्तंड, संगीत महामहोदय और पद्मश्री की उपाधियों और अनगिनत पुरस्कारों तथा सम्मानों से विभूषित पंडित ओंकारनाथ ठाकुर एक अभिनय कुशल गायक थे। वे सम्मोहित कर लेते थे अपने श्रोताओं को। पक्षाघात तथा अन्य बीमारियों से जूझते हुए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर 29 दिसंबर 1967 को इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए थे, परंतु उनके गायन के अनगिनत रिकॉर्ड और टेप आज भी लाखों संगीत प्रेमियों के हृदय में उन्हें जीवित रखे हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं,

सुबह सुहानी में आज हम बात कर रहे हैं अभी इस समय आज के दिन की कुछ विशेष घटनाओं पर। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का आज के दिन 1564 में निधन हुआ था। इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं रानी दुर्गावती। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की थी। आईनाए अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। वीरांगना महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोवा के राजगांव में 1524 में दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधु बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उनके अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं उन्होंने बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से रानी दुर्गावती का शौर्य किसी भी प्रकार से कम नहीं रहा। दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को लंबे समय तक इसलिए दबाए रखा क्योंकि मुस्लिम शासकों के विरुद्ध संघर्ष उन्होंने किया और उन्हें अनेकों बार पराजित किया। देर से ही सही, मगर आज भी तथ्य संपूर्ण विश्व के सामने है। धर्म की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि को उन्होंने चुना और अनेकों बार शत्रुओं को पराजित करते हुए बलिदान दे दिया। जिस कुशलता से राज संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की है। और भी बात करेंगे रानी दुर्गावती के शौर्य पर। एक ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम बात कर रहे थे रानी दुर्गावती के जीवन पर। कहते हैं कि जब अकबर ने रानी दुर्गावती के पति की हत्या कर दी थी, उनके पुत्र की, उनके भाई की और पिता की भी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने संदेश भेजा कि वो उनके हरम में आ जाए। लेकिन रानी दुर्गावती ने कहा कि मैं मर जाऊंगी या मार दूंगी, लेकिन तुम्हारे हरम में नहीं आऊंगी। अकबर ने अपने भतीजे को भेजा युद्ध करने के लिए। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ खूब युद्ध किया और उनको हरा कर वापिस भेज दिया। अकबर ने दुगनी सेना के साथ फिर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने मंत्री से कहकर रखा था कि अगर मैं शत्रुओं के हाथ लगने लगूं तो तुम मुझे मेरी हत्या कर देना। लेकिन जब ऐसा ही हुआ, रानी दुर्गावती उनके चक्रव्यूह में फंस गई, तो उनके मंत्री की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रानी दुर्गावती ने जैसे कि वादा किया था कि उनके हाथ में नहीं आएगी, तो उन्होंने अपनी ही कटार निकाल कर अपनी खुद को ही हत्या कर ली, और इस तरह उन्होंने वो उनके हाथ में कभी नहीं आई। सुबह सुहानी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब आज की खबर। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कतर के वर्तमान अमीर शेख तमीम से फोन पर बात की। रास लाफान हादसे में भारतीयों की मौत पर उन्होंने दुख जताया। भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के पीओके पर दिए गए बयान की आलोचना की है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष की खबरों को खारिज किया है। और अब बात करते हैं आज के मौसम की। हिमाचल के कुछ खास शहरों के मौसम के बारे में हम आपको बताते हैं। शिमला का तापमान आज रहेगा 25.6 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर का 35.5 डिग्री सेल्सियस, भुंतर का 33.8 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला का 32.4 डिग्री सेल्सियस, ऊना का 39 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर का नाहन का 34 डिग्री सेल्सियस, मनाली का 26.6 डिग्री सेल्सियस और कांगड़ा का 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है। तो इसके साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आपका सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। किशोर धीमान की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत।

कर्नल राणा की आवाज़ में ये थी शुभ प्याग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए

0: धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के साथ अभी आप सुन रहे थे ये गीत, जिसे हमने लिया है आशा फिल्म से। श्रोतो, अगला गीत सुनवाने से पहले लेते हैं एक ब्रेक, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: दादी, कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC apply.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे। अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दर्द फिल्म का ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत आपने सुना दिले नादान फिल्म से। अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में ये गीत रखवाला फिल्म से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तुम्हारी कसम फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और आशा भोसले के युगल स्वरों में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गाए इस गीत के साथ ही आज का गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, सुबह के 9 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम गीतांजलि का। तो दोस्तों, मौसम के बदलते ही ठंडी ठंडी हवा के साथ भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। ये यूँ कहिए कि हम ये तो नहीं कह सकते कि जाड़ों के दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन सुबह जब जागो तो ठंडी ठंडी हवा खुशबू जैसे फ़ज़ा में घुल मिल जाती है। ऐसे में समा तो खुशगवार हो ही जाता है, लेकिन खुशबू के साथ साथ ऐसा लगता है कि मानो समा कोई दास्तां सुना रहा हो।

सलमा आगा को अभी आप सुन रहे थे निकाह फिल्म में। वादा भुलाते तो कुछ बात और बात होती, वादा भुलाते तो कुछ और बात होती, हमें ठुकराते तो कुछ और बात होती। यूं ही भुला दी क्यों दोस्ती, हमारा कसूर बताते तो कुछ और बात होती, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे बेटा, जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
4: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
5: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
6: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
1: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क

0: विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका गीतांजलि कार्यक्रम में। और आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ नर्मदा।

0: श्रोतो, गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

0: विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
2: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
2: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
3: हम

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने आज रात 12 बजे से चक्का जाम करने का किया ऐलान। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया की शुरू। 1500 रुपये प्रतिदिन मानदेय निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने उठाए कई कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बावजूद जनादेश हथियाने का लगाया आरोप। और केंद्र सरकार ने कहा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित। सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निर्धार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यूनियन और राज्य सरकार के बीच कल हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने यह निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैये के कारण विवश होकर चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है।
1: मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी राज्य की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: एचआरटीसी चालक परिचालक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद निगम ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने भर्ती विज्ञापन जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयनित चालकों को विभिन्न डिपुओं में आवश्यकता अनुसार दैनिक आधार पर तैनात किया जाएगा। निगम ने चयनित चालकों के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन मानदेय निर्धारित किया है। यह नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी। एचआरटीसी प्रबंधन के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसी मकसद से यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार रसायन मुक्त कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन व किसानों को लाभान्वित करने के लिए बागवानी विभाग को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हारने के बाद भी जनादेश हथियाने का आरोप लगाया है। मंडी जिला के तत्तापानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणाम आए 1 महीने का समय हो चुका है, मगर सरकार अभी तक ब्लॉक समिति, जिला परिषद व अन्य स्थानीय निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भाजपा समर्थित विजयी प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया जा सके। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता संभालने के बाद 2500 से अधिक संस्थान बंद करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने ये सभी संस्थान जनता की मांग और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खोले थे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी अटल टनल देश दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि इस टनल का दीदार करने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है।
3: कुल्लू जिला के मनाली से आगे धुंधी में बनी अटल टनल देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। 10,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर बनी 9.2 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन किया था तथा सामरिक दृष्टि से भी ये टनल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लेह को सेना की जरूरत का सामान भी यहीं से होकर जाता है। अटल टनल रोहतांग अपने लोकार्पण के बाद से ही देश दुनिया के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी हुई है तथा मनाली घूमने आने वाले पर्यटक इस टनल का दीदार करना नहीं भूलते हैं। मनाली में इन दिनों पर्यटक सीजन चला है तथा हर दिन काफी संख्या में वाहन अटल टनल से आर पार हो रहे हैं। बीते सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार 3,00,000 से अधिक सैलानी अटल टनल से आर पार हुए। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों में सक्रिय सहयोग का आश्वासन किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है। इस बीच मौसम विभाग ने कल यानी 25 जून से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर तेज हवाएं व अंधड़ चलने का भी अनुमान है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ की चक्का जाम संबंधी खबर पर अमर उजाला और दैनिक जागरण की लगभग एक जैसी सुर्खी है। नहीं माने निगम कर्मचारी, आज रात से बसों की हड़ताल, सरकार ने लगाया एस्मा, नई भर्ती होगी। जबकि हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, निजी बस ऑपरेटर हड़ताल में सरकार के साथ अतिरिक्त सेवाएं देने को तैयार। पंजाब केसरी की एक खबर है, सरकार को VBG रामजी योजना का प्रारूप मंजूर नहीं, केंद्र से की जाएगी पैरवी। मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है, मॉनसून के आने से पहले 6 डिग्री गिरा पारा, लाहौल की चोटियों पर बिछी बर्फ की चादर। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, बिलासपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को पद्मश्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एचआरटीसी चालक परिचालक संघ ने आज रात 12 बजे से चक्का जाम करने का किया ऐलान। हड़ताल रोकने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया की शुरू।

0: 1500 रुपये प्रतिदिन मानदेय निर्धारित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकार ने उठाए कई कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बावजूद जनादेश हथियाने का लगाया आरोप। और केंद्र सरकार ने कहा, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग। सुहाग फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना सुहाग फिल्म से। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं और फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कारवां का गीत। अगला गीत सुनने से पहले कुछ संदेश।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुँच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

छू जाते हो कितनी दफ़ा तुम ख्वाब बनके, छू जाते हो कितनी दफ़ा तुम ख्वाब बनके, कौन कहता है कि दूर रहकर मुलाकात नहीं होती। तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और सुमन हाजिर है लेकर फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुना आपने इस गीत को। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेवफाई फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोंसले ने, तो आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में सुन रहे हैं आप इस गीत को।

श्रोता, इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं गीतों का कारवा आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन पंडित फिल्म से।

0: तेरे बेटा जीवन क्या बताऊं? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए

0: आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
4: शुद्ध अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आपको फिर से ले चलते हैं गीतों के कारवा की ओर। बेवफा सनम फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल ने। संगीत दिया है अमर उत्पल ने और गीतकार है रानी मलिक।

श्रोताओ, गीतों के कारवां का अंतिम गीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए थोड़ी सी हम आपको करवा देते हैं पहाड़ों की सैर, यानी आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों इस वेले तुहां सुनांदे हन पहाड़ा दे सुर कार्यक्रम। इस विच आहां तुहां जो सुनांदे हन पहाड़ी गीत और जड़े पहाड़ा दे सुर होंदे हिमालय और अन्य पर्वती क्षेत्रां दे पारंपरिक लोक संगीत दी धुना लोक गीत और प्राकृतिक संगीत में प्रवेश जियां कि अहां गलाई सकदे कि हवा झरने और पक्षियां दी आवाज़ां ने मिली के बनदा है इस संगीत। और इस संगीत च इत्थों दी संस्कृति जीवन शैली और प्रकृति का सब ते सुंदर प्रतिबिंब हुंदा है। तो देखो श्रोतो पहाड़ा दे सुर हैं साड़ा कार्यक्रम इस च पहाड़ा की गलबात ना हो तो गल ही नहीं बनती है। तो हाँ और भी गल्लां बातां तुहां सोगी करनी है ना तो फिर ही तो थोड़ा जिहा करी लैंदे कार्यक्रम विच मनोरंजन। तो सुनते हैं धीरज कुमार की आवाज़ा विच गाया है प्यारा दिया हिमाचली गीत।

श्रोताओ, पहाड़ों के सुर इस वेले तो सुना दी हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और पहाड़ों के सुर की गल हो तो संगीत विच ना हो तो गलबात नहीं बनती है। इतों के लोग वाद्य यंत्रां की गल करिए इस ढोल टमारो रणसिंगा हुड़का और बांसुरी पहाड़ों के कुछ वाद्य यंत्र होंगे हैं जो इतों के लोग गीतों जो जीवंत रखते हैं। कन्ने कन्ने इन सुर के मुख्य रूप से प्रकृति का वर्णन होता, वीरां दी गाथा दा वर्णन हुंदा, रितुआं दी गलबात हुंदी और बड़ी सारी होर भी गल्लां हुंदियां जिहड़ियां इत्थों दे गीतां कन्ने जुड़ियां रहिंदियां। तां होर भी तुहाडे कन्ने गल्लां बातां करनियां ने, पहले तुहां जो सुणवांदे हैं प्यारा दिया गीत धूड़ू नच्चा धूड़ू दे सौगी सौगी आहां भी थोड़ा जिहा नच्ची लैणा है। कन्ने आहां तुहां जो इस वेले सुणाउणा है इस प्यारे जे गीत जो

इस वेले पहाड़ा दे सुर तुहां सुणा दी आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते पहाड़ा च नदियां भी कल कल कर दियां ने और इत्थी दी हवावां जिहड़ियां सरसराहट कने पक्षियां दी आवाजां कने मिली के प्रकृति च एक नया संगीत बनांदियां जो साढ़े तनाव जो दूर करी के मन चो बड़ी शांति दिंदा है। तो शांति जो तो जीवन च बड़ी जरूरी हुंदी हैगी और इसी शांति जो ताही बनाई रखना है। कने कने आहां जो तुहां जो सुनाना है कार्यक्रम का अगला गीत तौवा प्रदीप परदेसी की आवाज़ तुहां

पहाड़े दे सूरे सवेले तुहां सुणा दी आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते तशो तो पहाड़ां दे लोकां दी गल्लबात करिए तां इहनां दा बड़े साधारण दे लोग हुंदे, सादगी वाले लोग हुंदे हन, कने दिले दे बड़े साफ और अच्छे हुंदे हन, बड़ा एक दूजे कने अच्छा व्यवहार करदे हन। कने दे सौगी सौगी अगर इहनां दे खाणे दी गल करिए तां बड़ा सादा कने पौष्टिक भोजन ही खांदे हन, राती जो रोटी कने दिने जो भत खांदे हन, और बहुत अच्छे मिलनसार लोग होंदे हैं। कने खाने दे भी बड़े सारे पकवान बनते हैं। देसी चीज़ों की गल करिए तो देसी सब्जियां बड़ी सारिया होती हैं, जेड़े जे साड़ी सेहत वास्ते बड़ी अच्छी होंदी है, और सेहत साड़ियाँ बरकरार रहिंदियां हैं। अपनी सेहत जो तो बरकरार रखना ही है। कने चलते चलते अहां जो तुहां जो सुनाई देना है उच्ची उच्ची रेडिया प्यारा दिया हिमाचली गीत। सिमैचली गीत जो तुहां सुना दे हैं ज्वाला प्रसाद की आवाज़।

अभी आपने सुना कार्यक्रम का अंतिम हिमाचली गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने आज रात 12 बजे से प्रदेशव्यापी चक्काजाम का ऐलान किया।

0: है। यूनियन और राज्य सरकार के बीच कल हुई वार्ता विफल रहने के बाद यूनियन ने यह निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने बताया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर लिखित आदेश न मिलने तक सरकार से कोई वार्ता नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के तानाशाही रवैये के कारण विवश होकर चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है।
1: मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हमें हल्के ये हमें ले रहे हैं। हमें 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है।
0: इस बीच राज्य सरकार ने निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1972 यानी एस्मा के प्रावधान लागू किए हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी राज्य की लाइफलाइन है और चक्का जाम किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
2: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक परिचालक संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की घोषणा के बाद निगम ने प्रदेश भर में बस सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए 656 अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम ने भर्ती विज्ञापन जारी कर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। चयनित चालकों को विभिन्न डिपुओं में आवश्यकता अनुसार दैनिक आधार पर तैनात किया जाएगा। निगम ने चयनित चालकों के लिए ₹1500 प्रतिदिन मानदेय निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लाखों श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने अधिकारियों को VBG रामजी योजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों के तहत फिलहाल हिमाचल प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी दर ₹247 और जनजातीय क्षेत्रों में ₹309 निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों, महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए ये मजदूरी दर पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मजदूरी दर में वृद्धि की मांग की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर स्थानीय निकाय चुनावों में हारने के बाद भी जनादेश हथियाने का आरोप लगाया है। मंडी जिला के तत्तापानी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणाम आए 1 महीने का समय हो चुका है, मगर सरकार अभी तक ब्लॉक समिति, जिला परिषद व अन्य स्थानीय निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भाजपा समर्थित विजयी प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर उन्हें कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया जा सके। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता संभालने के बाद 2500 से अधिक संस्थान बंद करने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। प्रदेश में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने शिमला में इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। विभाग के अनुसार अभियान के लिए आवश्यक पोलियो वैक्सीन की प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी कवालियां।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी कवालियां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अगली कवाली हम आपको सुनवा रहे हैं, ये दिल है आशिकाना फिल्म से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी कवालियां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं।

0: श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओ, अंग्रेजी का यह सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु,

0: पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
3: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
3: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
4: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
4: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
4: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब

0: आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेन्द्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
3: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
0: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
0: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
0: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
0: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज

0: लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं, और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं हम आपके मनोरंजन के लिए लेकर फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं क्रिश फिल्म से।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

सैनिक भाइयों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन का घर फिल्म से लिया गया ये गीत।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सैनिक भाइयों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में अब लीजिए सुनिए फिल्म सपने साजन के का ये गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाए साजन फिल्म के इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों, आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी रेडियो सखी मीनाक्षी, और कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी प्यारी दुलारी सखियों को हमारी ओर से, और नमस्ते हैं। आज है बुधवार और बुधवार को हम करते हैं बातचीत आपके साथ फैशन गलियारे पर। सखियों, फैशन केवल कपड़े पहनना नहीं बल्कि ये खुद को व्यस्त करने यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा है। इसमें हमारे वस्त्र, जूते, एक्सेसरीज जैसे घड़ी, बैग और सौंदर्य प्रसाधन, जो कुछ हम फेस पर लगाते हैं, क्रीम, फाउंडेशन, सनस्क्रीन इत्यादि सब आता है। सखियो, फैशन कई तरह का होता है। हर जगह पर हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कैजुअल की बात करें तो ये आरामदायक और रोज़मर्रा में पहने जाने वाले कपड़े हैं जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अब हम एथनिक और पारंपरिक वस्त्रों की बात करें तो सांस्कृतिक परिधान भारत में साड़ी, कुर्ता और लहंगा महिलाओं के पहने जाने वाले वस्त्र हैं। फॉर्मल कपड़ों की हम थोड़ी सी बात करते हैं। पेशेवर और कॉर्पोरेटर जगत में पहने जाने वाले कपड़े महिलाओं के लिए सूट और पुरुषों के लिए ब्लेजर हैं। सखियो, फैशन करना अच्छी बात है। नए तरीके के कपड़े पहनकर व्यक्ति का रूप रंग बदल जाता है, अच्छा भी लगता है और लगता है कि हम नए जमाने में जी रहे हैं और जमाने के साथ जी रहे हैं, और फिर सुंदर दिखने पर जो हमारा आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाता है। तो सखियों, ग्लैमर गलियारे की बातें अभी और भी हैं, लेकिन बातों के साथ साथ हमारी सखियों का मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
3: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत और विज्ञापनों के बाद फिर से हाजिर हूं मैं आपके खास अंक फैशन गलियारा में। सो क्यों फैशन इंडस्ट्री में हम अपना करियर भी बना सकती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हम कर सकती हैं। हम में से बहुत सारी सखियां ये कोर्स कर रही होंगी और कुछ करने का सोच रही होंगी, तो ये एक अच्छा विकल्प हमारे सामने है। हम में से बहुत सारी सखियों का शौक होता है सिलाई कढ़ाई में, तो जो सखियाँ इस तरह का शौक रखती हैं वो पूरा कर सकती हैं अपने शौक को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके। बस इसके लिए कपड़ों की अच्छी पहचान, अच्छी कटिंग, अच्छी सिलाई करनी आनी चाहिए, और नहीं आती तो हम इसे अच्छे से सीख सकती हैं। हाँ सखियों, सीखकर हम हर काम को सही तरीके से कर सकती हैं। फैशन चक्र भी सखियों घूम फिर कर फिर से वापस आ जाता है। फिर वही कपड़े, वही चप्पल, वही हेयर स्टाइल ही क्यों ना हो, थोड़े से जोड़ तोड़ के साथ इसे बदला जाता है और फिर से वही लौटकर हमारे सामने आता है। हमारे भारत में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी

बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पहनी जाती है। इसे भी हम अलग-अलग तरीके से पहनते हैं और साड़ी में हमारी सखियां बहनें काफ़ी खूबसूरत भी दिखती हैं। रंग बिरंगे ब्लाउज के साथ ये बहुत ही खूब लगती है। सखियों, जीने का तरीका अपनाकर पहनकर पहनावा अच्छा हो तो सब कुछ बढ़िया लगता है। और पहनावे के साथ हमारे घर का सामान भी हमें व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। फैशन में हर चीज़ को शामिल करना है, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाना है ना, और बढ़िया से हर चीज़ हो तो मज़ा आता है और हमारी जो खूबसूरती है वो भी निखर जाती है और चेहरे पे भी चार चांद लग जाते हैं।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: गीत और विज्ञापनों के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारी सभी सखियों का फैशन गलियारे में। सखियों, फैशन को जिस तरह से बयां हम करते हैं, बहुत विस्तार से हम बोल सकते हैं कि फैशन में हर चीज़ शामिल होती है। हमारा स्टाइल, हमारी ब्यूटी, हमारा सौंदर्य, मतलब सब कुछ इसमें आता है ना। और जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, जिस गैजेट का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब वर्तमान फैशन के अनुसार इसे हम चुनते हैं। फैशन सखियों एक चलन है और हम सब इसका अनुसरण कर रहे हैं और ख़ुद को बेहतर दिखाने के लिए अच्छे कपड़े, शानदार स्टाइल में उसे बढ़िया तरीके से पहन रहे हैं, अच्छा मेकअप कर रहे हैं, कुछ अलग तरह से हमें दिखने का शौक है। और जो हम सामान लेते हैं वो भी निश्चित रूप से फैशनेबल दिखने में हमें मदद करता है। सखियों, पहले के समय में भी फैशन हुआ करता था। आज हम दादा दादी, नाना नानी की पुरानी तस्वीरों को देखकर, उनके जो कपड़े, हेयर स्टाइल सब हैं उसे देखते हैं, लेकिन वो आज के समय से थोड़ा अलग होता था और उसे थोड़ा हमने मॉडिफाई कर दिया है। वो अपने समय का फैशन किया करते थे और हम अपने समय का। एक ही तरह के कपड़े पहनकर हम बोर हो जाते हैं, मगर फैशन वो है जो बदलता रहे। ये नए रंगों, नए स्टाइल को आजमाने में मदद करता है। बदलाव अच्छा है। हम लोग आज अपने घर को सजाने के लिए भी नए नए तरह का सामान लाकर सजाने की कोशिश करते हैं, जैसे अलमारी, इंटीरियर डेकोर, सोफे, और ऐसा हम अपने आप को करके, मतलब जो भी बदलाव हम करते हैं उसमें खुद को अच्छा महसूस करते हैं। घरेलू सामान ही आज बहुत बदलाव में आया है। आज हमारे रहने सहने का तरीका बेहद बदल चुका है। हर कोई चाहता है कि हमारा घर सुंदर दिखे, इसके लिए हम तरह तरह का सुंदर सामान जो है वो बाहर से खरीद कर लाते हैं, तरीके अपने बदलते हैं ताकि घर और भी सुंदर दिखे, हर कोई इसे पसंद करे और हर कोई आकर कहे कि आपका घर बहुत सुंदर है ना। और अगर घर में रहने वालों का साथ अच्छा हो तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो आइए मिलते हैं, सुनते हैं साथ में।

आज के समय में हम अपनी जमा पूंजी आधे से ज़्यादा अपना घर सजाने में लगा देते हैं ताकि घर बढ़िया लगे। इसके लिए महंगे रंग, टाइल्स, महंगा सामान, सुंदर गेट और खूबसूरत छत पर रेलिंग लगाते हैं। देखा देखी भी हम खूब करते हैं, बहुत अच्छे से घरेलू सामान खरीदते हैं। हमारे पड़ोसियों के घर ये है और हमारे पास ये नहीं, बस इसी देखा देखी के चक्कर में हम भी वो चीज़ें कई बार ले आते हैं और अपनी सजावट से अपने घर को सुंदर बनाते हैं। खैर, फैशन ने हमारे जीवन को सुख सुविधाओं में बदल दिया है। जो काम हम पहले के समय में घंटों में करते थे, आज मिनटों में कर रहे हैं। अब ज़्यादा क्या बोलें, कपड़े धोने की मशीन की बात करें तो आज हमारे कपड़े कुछ मिनट में ही धुल जाते हैं। पहले के समय में कपड़े धोने के लिए काफ़ी मेहनत लगती थी, काफ़ी समय लगता था। संयुक्त परिवार होते थे और एक दिन हम चुनते थे और बैठ के उस दिन कपड़े धो लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं।

इसी गीत की खूबसूरत पंक्तियों के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी के फैशन गलियारा। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +989128109191.

हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत जिसे हमने लिया मुगले आजम फिल्म से, और हमारे श्रोता ने सही कहा कि इसमें मधुबाला ने अनारकली सूट पहना हुआ है। लता मंगेशकर की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे इस गीत को। शकील बदायूं ने लिखा और नौशाद ने संगीत से सजाया। हम जो ये गीत सुन रहे थे, इस गीत में यानी इस फिल्म में मुगले आजम फिल्म की पोशाकें मक्खन लाल एंड कंपनी के द्वारा डिज़ाइन की गई थी। दिल्ली के कारीगरों ने इसे सिला था और इसके लिए जरदोजी जरी सूरत के विशेषज्ञों ने इसका काम किया था। मखमल रेशम ब्रोकेट जैसे महंगे और प्रामाणिक कपड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको बता दूं, पहले जो होता था कि कोई कंपनी वाले फिल्मों को डिज़ाइन करते थे, फिल्मों के कपड़ों को डिज़ाइन करते थे। अभी ड्रेस डिज़ाइनर का जो चलन था वो आया नहीं था फिल्मों में। कब आया था थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे श्रोताओं के मज़ेदार बातों की तरफ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे, तंग पेंट पतली टांगें लगती हैं सिगरेट जैसे। उसके साथ ही लिखते हैं भाभी की उंगली में हीरे का छल्ला, हीरे का छल्ला।

पहना, बहुत दिन पहले बॉटम, आज साड़ी पहन शर्माई, बड़ी खूबसूरत सी बात वो लिख रही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि हालांकि हमारे पुरुष श्रोताओं ने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट करें, पर हमारे एक श्रोता ने बड़ी संजीदगी से बड़ा प्यारा कमेंट किया है। वो लिखते हैं कि प्राचीन काल में बिना ब्लाउज और पेटीकोट की साड़ी शरीर पर लपेटी जाती थी। हाँ, ये नौगजी साड़ी होती थी जिसे पूरे शरीर पर लपेटा जाता था, उसी से एक ब्लाउज नुमा एक तैयार कर लिया जाता था और वही पेटीकोट बन जाता था, वही साड़ी होती थी, एक ही साड़ी होती थी, एक ही कपड़ा होता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में ब्लाउज पेटीकोट का प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद अब वो कहते हैं कि आजकल महिलाएँ प्री ड्रेप्ड साड़ी, कैप स्टाइल, रफेल और जैकेट स्टाइल साड़ी पहनना पसंद करती हैं। इसके अलावा साड़ी को बेल्ट के साथ पहनना भी एक बहुत बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, फैशन बदलता जा रहा है पर कपड़े तो लगभग वही हैं। तो इसके साथ साथ हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में महिलाओं के फैशन का नाम आते ही सबसे पहले उन्हें याद आती हैं साधना। अच्छा, माथे पर हल्की जुल्फें, फैशन कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही वो बहुत सारी बातें इसमें लिखते हैं, इसके साथ ही वो लिखते हैं कि फैशन का क्या कहना, हमारे हर ज़माने में फिल्मी सितारों का फैशन देखते हुए अपनाया गया। मेरी मम्मी को नरगिस जैसी साड़ियां पहनने का शौक था और उन्हें, यानी वो लिखती हैं कि मुझे इंदिरा गांधी जी की साड़ी का स्टाइल पसंद है और आज भी उसी स्टाइल में साड़ी पहनती हूँ। क्या बात है, बढ़िया बात है, ऐसी फैशन ही तो हमें बनाता है, जोड़ता है किसी के साथ में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बदली है वो फैशन है। आज स्कर्ट का कुर्ता तो कल स्कर्ट का, सही बात है, फैशन के पीछे पागल होते रहते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, कहती हैं कि फैशन चाहे जितना बदले मगर मेरा तो मानना है कि फैशन कितना भी बदले आप वही पहने जो आप पर फवे फवे भी। और दूसरी बात ये भी होता है, एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं, कैरी करना यानी संभाल पाना। हम जिस वस्त्र को अच्छे से संभाल सकें वो पहने तो कितना अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमने जो फैशन अपनाया वह अमिताभ बच्चन से प्रेरित होकर अपनाया, उनके बालों का हेयर स्टाइल, आधे कान ढके हुए और इस टाइप की कटिंग और पैंट में जो बेल बॉटम टाइप का था उसके नीचे काफ़ी फैला हुआ रहता था, पैंट की मोहरी ज़्यादा बड़ी होती थी। जी, वो फैशन बहुत चला और बहुत लोगों ने उसे अपनाया और हमने आपसे प्रश्न पूछा था बड़ा सरल सा कि आपको ऐसा कौन सा है स्टाइल जो पसंद आया था, पहन नहीं पाए। तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनारकली अब फैशन में आई है नए कलर में, स्त्री वर्ग पहनती नहीं है, अब आम वर्ग में फैशन में इसे ज़्यादा अपनाया है, ज़्यादा मोटी स्त्री अपना पेट छुपा सकती है। नहीं, देखिए क्या है, ये जो चीज़ें हैं जैसे अनारकली है वो बड़ा, अगर उसे हमारे कॉटन के कपड़ों में, सूती कपड़ों में बना लिया जाए तो कितना अच्छा होता है ना, पहनने में कितना सुकून मिलता है। इसके साथ हमारे श्रोता बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं फैशन के बारे में। और मुमताज़ जी दुपट्टा बालों में लगाती थी, वो उन्हें बहुत पसंद है, और पर ना बाल तब वैसे थे ना कॉपी करना आया, सो मन की बात मन में रह गई। मुमताज़ की अदायगी को कौन नहीं अपनाना चाहेगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, और ये अगला गीत है उसी हेयर स्टाइल को लेकर जो हेयर स्टाइल तब से लेकर आज तक फैशन में है। एक टाइम था जब ये आई थी और आज का वक्त है जब ये है, और इस स्टाइल को केवल इसलिए बनाया था क्योंकि माथा चौड़ा था अभिनेत्री का और माथा छुपाना था। चलिए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम बता दीजिए।

हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में यह गीत साहिल लुधियानवी के शब्दों से सजा और संगीतकार रवि ने इसे संगीतबद्ध किया। और हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि ये कौन सी फिल्म का गीत है, और बहुत सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं इस गीत को सुनकर। हमें भी प्रसन्नता होती है जब आपके मन का कुछ हम सौंप पाते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा कि उन्हें बहुत पसंद है ये गीत और ये है वक्त फिल्म का खूबसूरत सा गीत। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लिखते जा रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि दिल को छू लेने वाला ये गीत है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि साड़ी की फैशन रैपिंग सब चल रही है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि उन्हें पैंट पहनना अच्छा लगता है और स्पोर्ट्स लुक में दिखना अच्छा लगता है। तो बढ़िया बात है, अगर आपको स्वयं को उसमें देखकर अच्छा लगता है तो अवश्य वैसे दिखें। और हमारे श्रोताओं ने कहा कि एक श्रोता ने कहा कि फैशन तो रोज़ बदलते हैं, इसलिए इसमें ना ही फंसो तो अच्छा है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये बात भी आपकी सही है कि वैसे जिसको जो अच्छा लगे सो वही करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं पहले फिल्मों में देखा है कि हीरोइन कुर्ता साइड से बंद होता था और टाइट भी बहुत होता था और उनका बैक वाला हिस्सा अलग से दिखाई देता था। जी, ये फैशन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। और यही फैशन वाली बात में हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं तो बचपन से बचपन तक फैशनेबल हूँ, चाहे कुछ भी हो। पिता की पहली संतान थी तो 70 के ज़माने में फ्रॉक वेल बॉटम दिखते थे। बचपन से लेकर 10वीं तक 12वीं तक फ्रॉक्स मिडी फ्रॉक्स पहने थे, साथ में वो कलर की सैंडल गॉगल्स फ्रेम वाले अब तक नहीं छूटे, बस सैंडल छोड़ के पैर तोड़ने क्या इसलिए वो सैंडल नहीं पहनती। HMT टाइटन की घड़ी के साथ अब बालों का बताएं रीना राय वाली स्टाइल अपनाई है, तो सामने के कटवा के कानों के पीछे रखवाए थे। बाबा के हाथ से कई बार मार भी खाई लेकिन फैशन नहीं छोड़ी, क्या बात है। और हमारे श्रोता ने लिखा कि फैशन से बात याद आई 1983 में जितेंद्र और श्रीदेवी की मवाली फिल्म आई थी, फिल्म देखी, उनके गाने की ड्रेस पसंद आई, अगली दीपावली

पर वही ड्रेस अपनी दीदी को दिखा कर बनवा ली और इन्होंने उस ड्रेस को पहना। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोता ने कहा कि अनारकली के बारे में वो लिखती हैं कि वार्डरोब भरा रहता है और शिफॉन और सिल्क की साड़ियाँ, बनारसी कॉटन। क्या ये तो बात सही है कि अलग ही बात है। उन्हें घूंघट में, फिल्म घूंघट की वीना रॉय की शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनती हैं जो इन्हें पसंद आ गई थी हमारे एक श्रोता को, और शादी के बाद उन्होंने वही साड़ी बाजार में दिख गई, झट से खरीद लिया और पहनकर सबको बताई कि घूंघट वाली है वीना रॉय ने पहनी है। और रंगोली चित्र का चित्रहार में उस गाने को देखती हैं तो उन्हें अपनी वो साड़ी याद आ जाती है। क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कस्बा नुमा शहर में रहते थे, महिलाएँ आपस में मिलकर मैटनी शो फिल्म देखने जाया करती थी। बगल वाली एक मुंह बोली बुआ थी, वह उनके साथ गई। साधना और अनीता का पहना हुआ घाघरा सेट अच्छा लगा, अब उसके डिजाइन को कैसे आंखों में बसा जाए, तो फिर से वह जुगाड़ करके लगातार 3 बार उस फिल्म को देखने गई। तब उन्हें डिजाइन ने एकदम से वही गरारा बनाया था अपने लिए, और जब कॉलेज पहनकर गई तो बड़ी फक्र से कहती थी, यह मैंने महबूब की हीरोइन में जो पहनी उसी को देखकर बनाए। बहुत बढ़िया बात है, यह भी अपने आप में प्यार है। और 10 साल पहले बहन की हेयर स्टाइल पापा ने चेंज करवाई थी और साधना कट करवाई थी, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। अब यही श्रोताओं की बातों के बीच में मुझे एक बात याद आती है कि एक बार पढ़ा था कहीं कि भानु अथैया जो थी वो भारत की सबसे पहली और प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, और 1956 में आई गुरुदत्त की सुपरहिट फिल्म CID से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1982-83 में। और उसके बाद 1973 में उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए बहुत सारे कपड़े बनाए थे और डिज़ाइन किए थे। तो ये भानु अथैया जो थी इन्होंने ही 1968 में आई ब्रह्मचारी फिल्म की इस ड्रेस को बनाया था, यानी इस साड़ी को बनाया था जो गीत में हम देखने वाले हैं। अब आपसे मेरे पास से 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अगला जो गीत है वो किस फिल्म का है, तो बस उस फिल्म का नाम बता दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप फटाक से पहचान जाएंगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक पल के लिए आँख बंद कीजिए, आँख बंद कर ली, अब कौन सी हीरोइन दिखी है आपको, ज़रा उसका नाम लिख दीजिए। ये बात पुरुष और महिलाओं दोनों श्रोताओं पर लागू होती है। कौन सी हीरोइन आपको दिखी जिस जो आपको बहुत पसंद है, ज़रा उसका नाम हमें लिख भेजिए। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस फिल्म का नाम।

हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को, और हमने आपसे पूछा ये प्रश्न कि ये किस फिल्म का गीत है, तो आपने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। हमारा गीत शुरू नहीं हुआ उसके पहले हमारे पास संदेश आ गया था कि ये बहुत बढ़िया गीत ब्रह्मचारी फिल्म का यह गीत है, आपने पसंद किया। उसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, हमने कहा था कि आँख बंद कीजिए और बताइए कौन सी हीरोइन दिखाई दे रही है। तो एक श्रोता तो लिखते हैं, मुझे हर हीरोइन की सूरतें एक जैसी सुंदर दिखती हैं। सही बात है, इसमें आपके घर में रहने वाली हीरोइन भी होनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, श्रीदेवी, मीना कुमारी, किसी को श्रीदेवी की ड्रेसेस याद आ गई, किसी को, अच्छा हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बंद आँख से मैसेज कैसे लिखें आँख खोलने के लिए, तो कहीं हाँ हाँ आप आँख खोल सकते हैं और आँख खोलकर संदेश भेज सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे श्रोताओं को, किसी को साधना पसंद आई है, किसी को हेमा मालिनी, किसी की नज़रों में कृति सेनन भी है, और कोई कहता है शिल्पा शेट्टी की फिटनेस जो है वो उन्हें प्रेरित कर रही है आँख बंद करने पर, किसी को मधुबाला दिखाई देती हैं, तो ब्रह्मचारी में मुमताज़ की साड़ी किसी को याद आ रही है, किसी को हरे रंग के दुपट्टे याद आ रहे हैं, तो किसी को कुछ नया बड़ा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है जो याद आ रहा है। देखिए ये जो बात है ना, ये बात हमें हमारे सेंसेस से जोड़ती है कि हमें किसका क्या पसंद आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बंगाली सीनियर सिटीजन अपने हर वैवाहिक सांस्कृतिक फंक्शन में धोती कुर्ता पहनते हैं। जी बिल्कुल, और उसका उसी का प्रयोग कई सारी फिल्मों में भी किया गया है, इस बात को हम मानते हैं। चुन्नी बाबू को ये याद कर रही हैं जैकी श्रॉफ को उनके धोती दुपट्टे के साथ में। हमारे श्रोता कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के कपड़ों की बहुत नकल करी है उन्होंने, टाइट पैंट, टाइट शर्ट, हील वाले शूज़ और उन्हीं की तरह इतरा के चलना। अच्छा, और किसी ने लिखा है कि हमें तो काजोल याद आई देखकर। जी ये देखने की बात है, सोचने की बात है कि हमें कब कौन कहाँ कैसे याद आता है। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कुछ और कि मेरे दोनों लड़कियां और पत्नी जब कभी बाहर घूमने जाती हैं तो सलवार सूट और जीन्स पहनकर ले जाती हैं बेटियां माँ को, क्योंकि घूमने फिरने में आसानी होती है।

0: बस, और ट्रेन में चढ़ने उतरने में आसानी होती है, हालांकि वो घर पर तो साड़ी ही पहनती हैं। और हमारे श्रोता बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं, लिखते हैं कि कभी कभी हम ओल्ड फैशन समझकर ड्रेस अलमारी के कोने में रख देते हैं, जो बाद में कभी नए फैशन के रूप में लौटता है, तो फिर हम उसे फिर से ड्राई क्लीन करा कर पहन लेते हैं। कितना बढ़िया आइडिया दिया है आपने वस्त्रों के फिर से उपयोग का। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले तो भाषा के साथ कपड़े बोली सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है, फैशन बदलता है, लोगों की संस्कृति आराम और व्यक्तित्व को दर्शाता है। आजकल सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का चलन है, लेकिन फैशन सिर्फ महंगे कपड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद और बॉडी टाइप के हिसाब से कोई भी स्टाइल आप चुन सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने पूछा है, शर्मिला के जूड़े सबसे अलग थे, पता नहीं सच होते थे या विक पहनती थी, हालांकि उनके बाल तो बड़े दिखाई देते हैं, पर कौन जाने उनके जूड़े असली थे या वो बिक पहनती थी, ये बात तो हमें भी नहीं पता। पर चलिए, पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। तो अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। इसके गीतकार का नाम बता दीजिएगा, इस गीत के गीतकार कौन है, फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत है। और दूसरा प्रश्न, जैसे मैं हमेशा दो प्रश्न आपको देती हूँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आप घूमने तो गए होंगे, भारत की कई जगह पर घूमे भी होंगे, कहीं कश्मीर, कहीं मनाली या दक्षिण भारत में, या कहीं तो घूमे होंगे। जहाँ भी घूमने गए वहाँ पर सामान्यतः ऐसा होता है कि फोटोग्राफर कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं, उन्हें आप ऊपर से पहनते हैं, फिर आपकी एक फ़ोटो खिंच जाती है और उसे यादों के तौर पर आप अपने पास सहेज कर रखते हैं। हुआ होगा ना, ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आपने पहनी थी कभी और उसके साथ फ़ोटो खिंचाई थी, भारत के या विदेश के कहीं भी आप गए हो घूमने के लिए और वहाँ की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचाई हो आपने, आपके परिवार में किसी ने, तो ज़रूर साझा कीजिएगा और बताइए अगले गीत के गीतकार कौन है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ,

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ, और आप सबने सही पहचाना आनंद बख्शी के बोल। अब एक रोचक जानकारी इस फिल्म को लेकर, इसकी ड्रेसेस को लेकर मिली कि इस फिल्म के जो कपड़े हैं, लुक्स हैं, उनको मुख्य रूप से राज कपूर ने खुद ने डिज़ाइन और स्टाइल किया था, पर इसमें इनका साथ करने वाले बिन रामानी जिन्होंने वार्डरोब स्टाइल सजाई थी, सत्यवान और बीआर लक्ष्मण इसके टेलर थे और उन्होंने पूरे इन ड्रेसेस को बनाया था। कितना दिमाग और कितनी सोच लगती है एक फिल्म की एक ड्रेस को बनाने के लिए, ये भी अद्भुत कला है अपने आप में, और इस कला को भी हम सब याद रखते हैं। और जब हम याद रख ही रहे हैं तो हमें याद है कि हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न बड़ा प्यारा सा था, बड़ा रोचक सा था कि आपने कभी कोई ऐसी तस्वीर खिंचाई है क्या। तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए कि वो एक बार शिमला गई थी, बहनों के साथ फ़ोटो खिंचाई थी, वह उनके पास में है। कोई असम घूमने गया था तो फ़ोटो खिंचाई थी, उसे संभाल कर रखा है। कश्मीरी लिबास में 300 रुपये के फैशन के साथ रोजी रोटी भी चलती है और उन्होंने वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचाई थी, क्या बात है। मणिपुर में भी फ़ोटो खिंचाई हमारे एक श्रोता ने, उनकी जेठानी, किसी की जेठानी कश्मीर गई थी तो वहाँ के कपड़े पहनकर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई और पर्स वहीं भूल कर आ गई, जो कि उन्हें बाद में मिला नहीं, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता बताते, बहू जापान गई थी तो वहाँ की पारंपरिक पोशाक किमोनो में फ़ोटो खिंचाई थी, वही पोशाक जो आशा पारेख ने सायोनारा वाले इस गीत में पहनी थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी दी, वो कहते हैं बॉबी के इस गाने में अकार्डियन जो है वो स्वर्गीय सुमित मित्रा ने बजाया था। जी, बहुत रोचक जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता ने बताया कि छठी कक्षा में थे तब उन्होंने बॉबी देखी थी, और श्रोता बता रहे हैं कि संदर्भ मुझे याद आता है जब बॉबी पिक्चर लगी थी तो ये लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि बॉबी देखी या नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कितनी बार बॉबी फिल्म देखी। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने किसी ने कश्मीर में फ़ोटो खिंचाई है और किसी ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो बताया बहुत सारी बातों को उन्हें।

एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सबसे अच्छा ड्रेस सैनिकों का लगता है, उन्हें देखते ही अपने आप हाथ सल्यूट करने लग जाते हैं। क्या बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि डल झील में उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी, और हमारी श्रोता बताती हैं बॉबी फिल्म का याना इसकी ड्रेस मैंने और मेरी दीदी ने एक बार बनवाई थी। नोट बैंक की टॉप पहनते थे, स्काउट पहनते थे, और बड़े फ़ोटो भी उन्होंने इस बात को लेकर खिंचाई है। तो ये सारे हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं, और इन श्रोताओं की उत्तरों के साथ में हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और हमारे श्रोता बता रहे हैं कि फैशन हर वक्त बदलता रहता है, और स्कूल कॉलेज भी मैं भी बहुत फैशनेबल रहे हैं। वो बड़े बाल रखते थे, स्टाइलिश कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, कई बार स्कूल में गुरुजी से पिटाई भी होती थी। हाँ, वो दौर बड़ा अच्छा था जब गुरुजी पीटा करते थे, और हमारे गुरुजी तो कहते थे गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, शायद आती होगी, इस बात से ऐसा हम मान कर चलते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फैशन कभी पुराना हो नहीं सकता। फैशन एक शब्द है, और उसके साथ में उनका उन्होंने ब्लाउज़ की बड़ी अच्छी वो बताई हैं कि पहले पफ वाली बाह और जो दादी नानी पहनती थी वो वाले ब्लाउज़ अब फिर से आ गए हैं। हाँ, कॉलेज में पैरेलल पहनते थे, प्लाजो पहनते थे, अब वापस आ गए हैं। और रेखा की दो चोटी वाले बालों की स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। जी, इतनी अच्छी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अब एक बात और हमारे मन में आती है कि जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी बड़ी तरीके से दिखा देते हैं। जब रंगमंच पे आप होते हैं या फिल्मों में होते हैं तो कपड़े आपकी स्टाइल को बताते हैं कि अगला मूड क्या है। अब हम अगर अगली फिल्म का ये गाना ले लें तो इसमें जो कपड़े हैं उन कपड़ों को मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने पहले जो एक्ट्रेस है यानी हीरोइन जीत यानी करीना कपूर के कपड़ों को बड़ा बेफिक्री वाले कपड़ों में दिखाया है, और थोड़ी देर बाद जब उनका दिल टूट जाता है तो सलवार सूट में दिखाया है। कपड़े भी आपकी संजीदगी को दिखा देते हैं। वैसे ही अभिनेता आदित्य यानी शाहिद कपूर को भी पहले बड़े संजीदा कपड़ों में और बाद में बेफिक्री में दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें आपके मूड को भी यानी आपकी फिल्म की कहानी को भी दिखाते हैं, तो कपड़े कुछ इस तरह से दिखाते भी हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ये गीत, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है। और एक बात और, सबसे सुकूनदायक वस्त्र कौन सा है जो पहनकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं? सबसे सुकूनदायक वस्त्र आपका कौन सा है? अगर हमसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए तो हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे हमें सलवार सूट में बड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें आराम मिलता है, बताइएगा।

हम सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का यह गीत इरशाद कामिल के बोल प्रीतम के संगीत के साथ, और हमने आपसे पूछा कि इसके गायक कलाकार कौन है, आपने सही पहचाना उस्ताद राशिद खान। और इसके साथ हमारे श्रोताओं से हमने एक और प्रश्न पूछा था कि आपको ऐसा कौन सा वस्त्र है जो बड़ा कंफर्टेबल लगता है, बड़ा सुकूनदायक होता है तो वो आप पहनते हैं। तो हमारी श्रोता लिखती हैं कि उन्हें हल्के रंग की सूती साड़ी जो है वो उन्हें पसंद है। इसके साथ ही कोई लिखता है कि हाई हील वाले जूते, हीरो जूते पहनते थे वो उन्हें बहुत पसंद थे, उन्होंने मंगाए भी थे, जिप वाले जूते, हाँ एक चैन वाले जूते हुआ करते थे, अभी भी फैशन में है, लड़कियाँ पहना करती हैं उस फैशन को आजकल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुकून और आरामदायक जो है वो साड़ी ही लगती है और उनके ऊपर भी अच्छी लगती है। वैसे एक बात कही जाए तो भारतीय महिलाओं के ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, सुंदरता, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाई देते हैं। उसके साथ कई लोगों ने साड़ी को बोला, किसी ने कुर्ती प्लाजो को बोला। जब वी मेट में करीना कपूर ने पटियाला सूट पहना है जो देखते बनता है, जी बिल्कुल। कुछ हमारी एक और श्रोता लिखती है, कुछ कुछ होता मैं भी, काजोल ने शुरू में डंगरी पहनी और बाद में खूबसूरत साड़ियाँ, मूड के मुताबिक उसको पहना गया था। जी बिल्कुल, यही तो बदलाव दिखाने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, ये बात तो कई लोगों ने लिखी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा और बिल्कुल ढीला, पहनने में बहुत सुकून होती है, पर गंदा भी तो बहुत होता है ना पर ठीक है, सबकी अपनी पसंद है। लॉन्ग टी शर्ट और पटियाला वाला

क्वेश्चन इससे ही आया था। हमारे कुछ श्रोताओं का ऐसा कहना है कि उनका कोई गीत सुनने में नहीं आया, तो मैं क्षमा चाहूँगी, सुनते जाइए, ये गीत भी तो अच्छे ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें गाउन पहनना अच्छा लगता है, लेकिन किसी और के सामने जाना अच्छा नहीं लगता, गाउन उन्हें बड़ा कम्फर्टेबल लगता है। जी बिल्कुल, हल्का फुल्का सा वस्त्र होता है। कोई अपनी पत्नी के कपड़ों के बारे में बता रहा है कि उन्हें सलवार सूट पसंद हैं, और कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई कह रहा है लुंगी अच्छी लगती है पहनने में, तो किसी ने बताया बनियान और वो पट्टे वाला हाफ पैंट जो होता है वो लोगों को पसंद आता है, किसी को सूती कुर्ती और लेगिंग पसंद है, तो किसी को एक लोअर टी शर्ट में, वो किसी भी फैशन में किसी भी कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें लोग बता रहे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनका विवाह जो है वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ससुराल भी वहीं है, तो उनकी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई थी जिसका उन्हें याद है। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे एक समय था जब ग्राहक डिज़ाइन देखने के लिए फिल्म दिखाने के लिए आता था और कहता था ये वाली डिज़ाइन बना दो, यानी हमारे जो कपड़े सिलने वाले थे उनको फिल्में देखनी पड़ती होंगी उस समय पे, क्योंकि वो डिज़ाइन बनानी होती थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे श्रोता लिखते हैं। ऋषि कपूर की स्वेटर और देवानंद की मफलर का फैशन लाकर छा गए थे। जी बिल्कुल, और देवानंद के तो कपड़ों पर बैन भी लगा था शायद, ऐसा कुछ किस्सा भी सुनने में आता है, शायद आपको भी पता हो, किसी को लोअर टी शर्ट में आराम मिलता है और किसी को शर्ट में, किसी को सलवार कुर्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर किसी का अपना अलग विधान है कि उसे ये पसंद है। और अब हम चल रहे हैं आज की शाम के, आज के इस कार्यक्रम के कुछ अंतिम गीतों की तरफ, और ये अगला गीत आप सुनिए और बस बता दीजिए ये कौन सी फिल्म से है, और इस फिल्म के बारे में एक बड़ी रोचक सी जानकारी हमें कहीं से मिली थी, तो वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस फिल्म के लिए, चांदनी के लिए भी कपड़े जो बनाए थे भानु अथैया ने बनाए थे, और नीता लुल्ला ने भी इसमें बहुत मदद की थी उन कपड़ों को बनाने के लिए, और बड़ा स्टाइल फेमस हो गया था, मतलब वो बड़ी अच्छी साड़ियाँ थी और लोगों ने उस समय बहुत पहनी भी ये साड़ियाँ। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और बताइएगा ये इस गीत के संगीतकार कौन हैं, नाम पूरा लिखिएगा संगीतकार का।

और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं पर समाप्त होता है, परंतु हम आपके साथ वो साझा करना चाहेंगे जो आपने बताया है जी। हमने पूछा था कि इसके गीत संगीतकार कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बातें आपने हमें बताई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज के दिन हमने बहुत सारी फैशन डिज़ाइन और इन सब की बात की। हमारे श्रोता ने बताया कि पहले तो लड़कियां पैसे भी देती थी कि जाकर आप यह फिल्म दिखाइए मास्टर जी और फिर वैसा कपड़ा बना दीजिए, तो ये इतनी अच्छी रोचक जानकारियाँ हमें मिली, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। सदा मंगल हो, नमस्कार, प्रणाम, सदा खुश रहिए।

आज की त्रिवेणी में पड़ोसियों की चर्चा। वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने कामकाज और नौकरियों के कारण प्रायः एकल परिवारों में रहते हैं। यहाँ पति पत्नी और एक या दो बच्चों का परिवार होता है। सगे संबंधी दूसरे शहरों या गांवों में छूट जाते हैं। ऐसे में पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं। वैसे भी ये सच है कि किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ोसी ही मदद के लिए सबसे पहले काम आते हैं। पड़ोसियों से हमें हमेशा मृदु व्यवहार और सहयोग का भाव बनाकर रखना चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार है तो जीवन की मुसीबतें बहुत आसान हो जाती हैं।

हम में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अथवा दूसरे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान लेकर रहते हैं। ऐसे लोगों को पड़ोस में बहुत सजग रहना चाहिए। उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे यहाँ केवल अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। उन्हें रास्ते से भटकाने के लिए पड़ोस में बहुत से आकर्षण मौजूद होते हैं। अरे

ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ही केवल मुसीबत में ही काम आते हैं, वे हमारे किसी पार्टी या शादी समारोह में भी बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कई बार दोनों की छतों का उपयोग करके हम छोटी मोटी पार्टी के लिए एक अच्छा स्पेस निकाल सकते हैं। अच्छे पड़ोसी अपनी छत का उपयोग और कई रोचक कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे

0: जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी

0: नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101515। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवाज और

0: शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज़ है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन

0: उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए नमस्कार।

0: बोले ये दिल का इशारा, आंखों ने मिल के पुकारा।
1: जितना है प्यार तुमको उतना है प्यार हमको।

0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।
1: ये समाचार

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों व परिचालकों से एक बार फिर अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में प्रतिदिन हजारों लोग परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हैं और यहां आने जाने के लिए बसों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे में चक्का जाम करना किसी भी सूरत में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चालकों परिचालकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और पिछले 3.5 वर्षों के दौरान कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया है। अग्निहोत्री ने चालकों व परिचालकों से अपनी मांगे मनवाने के लिए चक्का जाम की बजाय कोई दूसरा रास्ता अपनाने को कहा है।
1: जब 5 लाख लोग ट्रेवल करते हैं, ये यूनियंस को भी मालूम है कि लोगों को हिमाचल प्रदेश में ना तो रेल का रास्ता है, हिमाचल प्रदेश में ना तो एयर का रास्ता है, बसेस का ही रास्ता सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है। तो इसलिए कोई भी फैसला लेते समय जो है विवेक से बात होनी चाहिए। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तो हम डिफॉल्टर होते पे में पर मंथ, तब तो आप ऐसा बड़ा कदम उठाने के बारे में बोलते कि आपको पिछले 41 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। जब आपको तनख्वाह मिल रही है और हर महीने की मिली है, इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी बहाने जो है चक्का जाम करना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अपना सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इसका आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में किया गया और ये प्रतियोगिता कल देर शाम सम्पन्न हुई। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा श्रीलंका, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा खेलों की ओर आकर्षित होते हैं और नशा मुक्त समाज के लिए ये एक बेहतर प्रयास है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहीं। सांसद सुरेश कश्यप ने आज काला अम्ब पांवटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मारकंडा नदी के ऊपर बने 180 मीटर लंबे खजूरना पुल का उद्घाटन किया। इस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज व्यस्तता के कारण इस पुल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण नहीं कर सके। इस मौके पर सुरेश कश्यप ने कहा कि इस पुल के बनने से हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए भरपूर धनराशि दे रही है और इस समय प्रदेश में 22,190 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

0: बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे जिला सिरमौर और विशेष रूप से देहरादून को जाने जाने वाले हमारे यात्री हैं या पर्यटक हैं उनको होने वाला है। ये पुल जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और लगभग 3.5 वर्षों में इसको पूरा किया, 2022 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 22,190 करोड़ निवेश के लगभग 35 प्रोजेक्ट जो कि 545 किलोमीटर के लगभग हैं, इसका जो है काम चल रहा है।
1: देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप्स ने यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। ये युवा नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरी है। नीति आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अंतिम मूल्यांकन के बाद 6 स्टार्टअप्स को उनके स्केलेबल और उच्च प्रभाव वाले समाधानों के लिए चुना गया। विजेता स्टार्टअप्स को 3,50,000 रुपये का सीड ग्रांट मिला, जबकि उपविजेता को 2,20,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, भारत के असाधारण बच्चों को सम्मान। वाचक स्वर है राकेश शर्मा के।
1: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के असाधारण धैर्य, साहस, सृजनात्मकता और अदम्य जज्बे वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 6 श्रेणियों बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह का आयोजन वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के अवसर पर किया जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के ऐतिहासिक बलिदान और उनके अदम्य साहस को समर्पित है। इस प्रकार भारत सरकार समकालीन युवा प्रतिभाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को दृढ़ संकल्प और मूल्यों की कालजयी विरासत से जोड़ती है। भारत वीरों की भूमि है, जिसकी पहचान पीढ़ियों से इसके युवाओं के साहस, बौद्धिक प्रतिभा और त्याग की गौरवशाली परंपरा से निर्मित हुई है। युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस से लेकर बाल्यावस्था में ही वेदों के प्रकांड विद्वान बने आदि शंकराचार्य तक कम आयु में ही असाधारण संकल्प, प्रतिभा और समर्पण का भाव भारत के इतिहास में गहराई से रचा बसा है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चों को मान्यता देना और उनका सम्मान करना है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को मान्यता देकर युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करता है और अन्य बच्चों को भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। पदक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र से युक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत के युवा परिवर्तनकर्ताओं के धैर्य, साहस, सृजनात्मकता और अदम्य जज्बे को समर्पित एक सम्मान है। वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक 203 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस पहल के माध्यम से सरकार बच्चों को केवल शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत आचरण सहित जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। असाधारण वीरता और उत्कृष्टता के लिए बच्चों को 6 क्षेत्रों में लगभग 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अपने जीवन को जोखिम में डालकर निस्वार्थ सेवा या साहस का परिचय देने वाले बच्चों को बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया है जिनके साहस, सृजनात्मकता और करुणा ने उनकी कम आयु से कहीं बढ़कर परिपक्वता का परिचय दिया है। हाल के पुरस्कार विजेताओं में शामिल अनेक बच्चों ने अपने अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का परिचय दिया है। इस पुरस्कार के नामांकन के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें बालक भारतीय नागरिक और भारत का निवासी हो, उसकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच हो, वो किसी भी श्रेणी में इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता नहीं होने चाहिए। घटना, उपलब्धि या कार्य नामांकन की अंतिम तिथि

0: 31 जुलाई 2026 से पिछले 2 वर्षों के भीतर हुआ होना चाहिए। ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। किसी बच्चे को एक से अधिक श्रेणियों के लिए नामित किया जा सकता है, लेकिन समिति के पास केवल एक आवेदन स्वीकार करने का विवेकाधिकार होता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बच्चे का नामांकन किया जा सकता है। बच्चे स्वनामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ सरकारी निकायों और कार्यालयों से भी सिफारिशें आमंत्रित की जाती हैं। आवेदकों को अपने व्यक्तिगत विवरण और पुरस्कार श्रेणी भरनी होती है और हाल ही के एक तस्वीर और सहायक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। उन्हें अपनी उपलब्धि और उसके परिणाम का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करना होता है, जो अधिकतम 1000 शब्दों में होना चाहिए। सभी नामांकन प्रविष्टियां निर्धारित समय सीमा तक सरकारी वेबसाइट https://awards-gov-in पर जमा कर दी जानी चाहिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री पुरस्कार समिति का गठन करते हैं और पुरस्कारों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति में पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित क्षेत्र या विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति प्राप्त नामांकनों की समीक्षा करती है और पुरस्कार विजेताओं की अनुशंसा करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पुरस्कार विजेताओं और उनके अधिकतम 2 अभिभावक अथवा संरक्षकों के लिए आने जाने की इकोनॉमी श्रेणी की यात्रा, स्थानीय परिवहन, आवास और भोजन की व्यवस्था में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। पुरस्कार व्यक्ति रूप से प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि पुरस्कार विजेता समारोह में उपस्थित नहीं हो सकता अथवा मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किए जाने की स्थिति में उसके स्थान पर एक अभिभावक या संरक्षक पुरस्कार ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती हैं।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियाँ होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको ज़रूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियाँ होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियाँ विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी
1: मांग हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है, बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इलकल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए भी उपयुक्त बनाती है।
1: हाँ बिल्कुल, और इलकल साड़ियों में लाल रंग मिलता है, हरा है, नीला है, बैंगनी है और मरून जैसे पारंपरिक रंग जो हैं बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। और इसके पल्लू पर सुंदर धारियां और पारंपरिक आकृतियां भी बनाई जाती हैं, बॉर्डर पर विशेष डिजाइन इसकी पहचान बनाते हैं, और कई साड़ियों में मंदिर कला या ज्यामितीय पैटर्न की झलक भी देखने को मिलती है।
0: और एक इलकल साड़ी केवल एक कपड़ा नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि बुनकरों की कला, धैर्य और मेहनत का परिणाम होती है। हथकरघे पर बैठकर बुनकर धागों को जोड़कर एक सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं, और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है, और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा अभी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है, और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है, और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। हाँ। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का सर तकी वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन के जा सकते।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है,
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ। यानी आप उसमें बिल्कुल सिर्फ एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है उतना ही

0: समय में साड़ियां भी पहन
1: उसी तरह से पहना भी जाता है, लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और होता है
0: ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

0: हाँ, तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी।

0: जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता है।
1: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
0: तो ऐसी जब
1: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने, और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
0: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है,
1: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
0: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
1: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
0: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
1: हाँ, हाँ।
0: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है, तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
1: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
0: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
1: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही, और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
0: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
1: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं,
0: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं, या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
0: थोड़ा सोचे समझे। संयम से काम है।
1: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
0: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
1: इस्तेमाल
0: होने लगता है, तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी, उससे आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
0: ये सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए।

0: समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराने जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताबें।
1: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा यानी जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए,
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना, मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है, इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है। और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है, हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस ऐप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है, किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन

0: बना रहे।
1: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
0: वही एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं और अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुँचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने, और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
0: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
1: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखती है कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत ना हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा, और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए या एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस
1: नहीं,
0: साल
1: तो
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर देते
0: जी। तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार

0: होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं, उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना है, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर ला कर देंगे या दो चार दिन बाद ला कर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें
1: संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए, ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का।
0: गाना सुनाना चाहिए।
1: सुना

मंदाकिनी जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने

0: लिखा है कैरी 1 किलो, कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ खाया
1: खा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रस्सा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
0: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा

0: लें उन फलों को, और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरें। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वहीं एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
0: और अब क्या करना है?
1: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
0: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जा रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नज़र में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
2: जी। नमस्कार,
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता
2: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता

0: जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
1: जी, वहीं से

0: 20 साल का था, तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था, और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था, जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे, उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसें और ड्राइंग शुरू हो, और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग ख़त्म हो।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक शुरुआत थी, और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यहीं रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें, और हमारे पिता के कारण से मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूँगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी,
0: और अगर आप कहें तो मैं 2 वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारी का जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारी का वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक, इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, 2 लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5th ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें 5 फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्ज़ाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्ज़ाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला 1st डिवीज़न पास हुआ था, बाकी सारे लोग 2nd डिवीज़न में थे।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे, जांचने वाले थे, उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहाँ पर जंगल में वन प्राणी हैं और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य

0: पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करनी पड़ती है?
1: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आँख मुझे मिली है वही आँख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूँ उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियाँ होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियाँ दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
0: जी।
1: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो हैं आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को या उसको। मैं तो देखता हूँ कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
0: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
1: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
0: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
1: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज़ है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को ख़ास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
0: जी,
1: है।
0: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
1: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज ख़त्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
0: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
1: जी।
2: ओ शाम कुछ

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा कर के उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी ही सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज़्यादा चमकीला और इतना ज़्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज़ सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था

0: वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं। किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है
1: जी।
0: किसी चित्र को समझने की ज़रूरत नहीं है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीज़ें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनाएं?
0: मैं चाहूँगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी। हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था, एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई, उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया, और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है ज़रा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में, और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे, जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूँ, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेस्टर हविस आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे, उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है, और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ ख़ास बारीकियाँ सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
1: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला, और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी, और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने, और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज़्यादा पॉपुलर हो गई।

0: है क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था, तो इतनी ज़्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में, और वहाँ पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ, और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सके। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ, तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए। और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे, और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस जर्नी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं। तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊँगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भीतर सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए, कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा

0: की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बी वी कानन थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर हैं वैदेही, उनको बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में। और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और
1: जी
0: अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कानन जो है भारत भवन में थे, और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और
1: जी
0: उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंद गुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी। मगर बाबा कानन एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंद गुप्त में से स्कंद गुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक, तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया,
1: जी
0: और वो अभी छपने के प्रोसेस में है,
1: जी
0: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही, जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब
1: जी
0: द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से।
1: जी जी
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सब का उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीज़ों से वंचित रहना पड़ता था। मॉस्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ।
1: ओ
0: ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए
1: जी
0: कि
1: जी
0: कोई व्यक्ति
1: जरूर।
0: अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है, और
0: जी
1: एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर, तो
0: हाँ
1: हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और
0: हाँ
1: दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को
0: ये
1: बताइए।
0: जो मेरी किताबें हैं, इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में। और उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो, मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 हैं, एक उनके बारे में भी है, शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से, मतलब काफ़ी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी,
1: जी
0: वैसे ही, मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे।
1: जी
0: तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो, मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन,
0: मेरे
1: दोनों?
0: लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना
1: जी
0: तो कभी कभार है,
1: कभी
0: मतलब
1: कभार के
0: मैंने,
1: लिए।
0: हाँ, ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 1974 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट

0: तो वहाँ कैन नॉट प्लीज स्पीक, हमने बैनर देखा सिक्स हु डिक्लाइन टू नाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी छः लोग हैं, छः कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नज़रें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था। बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना उड़ती सी नजर, बट ही रिमेम्बर्ड वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफ़ों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नज़र नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में, विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक करके, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज़ समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियाँ हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो। मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी।
1: जर्मन आदमी भी मनुष्य है और बाकी लोग भी।

0: जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
1: जी जी, यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा
1: जी, सुनते
0: ये
1: हैं
0: ये वाला सुनता।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका

0: स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
1: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें वो सब?
0: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
1: जी जी।
0: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज़्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
1: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये ज़रूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
0: हाँ,
1: ये भी थोड़ा सा बताइए।
0: ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। रदा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज़्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज़ होती हैं। कई बार चित्र जो हैं खुद भी इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं। और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है कि जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते
1: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
0: मुश्किल होता है। वो
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी

यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SMKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले

गैर फिल्मी भजन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

0: मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आज का सेगमेंट है स्पोर्ट्स बीट। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। जी दोस्तों, जब बात होती है हिमाचल की और देश के युवाओं की, तो खेलों के प्रति उनका जुनून सातवें आसमान पर होता है और हर खिलाड़ी अपने आप में इतिहास रचना चाहता है। और इस इतिहास को एक सही दिशा तब मिलती है जब हमारे खेल संघ हमारे खिलाड़ियों का साथ देते हैं, उनकी प्रगति में अधिक से अधिक काम करते हैं। और आज कार्यक्रम युवा मंच के हिमवीट स्पोर्ट्स वीट सेगमेंट में हम शामिल करने जा रहे हैं एक खास हस्ती से की गई बातचीत को। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि वो हस्ती है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर संजय शर्मा जी। तो चलिए कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं उनसे की गई बातचीत। श्रोताओं, धर्मशाला शहर, हमारा शहर, ये शहर अपने पर्यटन स्थलों और यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहीं पर है दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट की तस्वीर बदलने और धर्मशाला जैसे खूबसूरत स्टेडियम को दुनिया के नक्शे पर चमकाने में जिस संस्था का सबसे बड़ा योगदान रहा है वो है HPCA, यानी कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। और आज उसी HPCA के निदेशक संजय शर्मा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मुझे आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।
0: जी सर। और सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप HPCA के निदेशक हैं, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से लंबे समय से HPCA से जुड़े रहे हैं, तो आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हिमाचल में क्रिकेट के सफर की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी नजर में क्या है?
1: देखिए, पिछले 25 वर्षों का जो सफर, क्योंकि ये जो क्रिकेट संघ है इसकी कमान अनुराग ठाकुर जी ने सन 2001 में इसकी संभाली थी
0: जी।
1: तो मुझे लगता है कि हर दिन, उस दिन से लेकर के हर दिन आज तक
0: जी,
1: हर दिन उपलब्धियों भरा रहा है, संघर्ष का रहा है और चुनौतियां रही हैं
0: जी।
1: तो निश्चित तौर पे हर दिन कहीं ना कहीं एक नया सवेरा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट के लिए लेकर के आए हैं
0: जी। और सर, एक सबसे बड़ी बात, जब भी धर्मशाला स्टेडियम की बात आती है तो इसकी खूबसूरती सबसे पहले जिक्र में आती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि दुनिया का ये सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदान जो है उसे बनाने में HPCA की क्या भूमिका रही है और इस विकास की यात्रा को आप किस तरह देखते हैं?
1: सन 2000 के भीतर जब अनुराग ठाकुर
0: जी
1: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने
0: जी जी,
1: तो निश्चित तौर पे 25-26 साल के एक नौजवान के हाथ में बागडोर आई। उसके साथ जो टीम, जो सुडी साथ में टीम आई
0: जी,
1: वो भी नए लोगों की टीम थी। और अनुराग ठाकुर क्योंकि खुद एक क्रिकेटर रहे हैं
0: जी जी बिल्कुल,
1: और निश्चित तौर पे उनके मन में हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट को लेकर के एक कहीं ना कहीं मन में व्यथा थी कि कहीं हिमाचल प्रदेश जो है वो इतना टैलेंट होने के बावजूद जो है वो सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है
0: जी।
1: यहाँ के जो क्रिकेटर हैं उनका स्तर जो है, जो क्रिकेट देश के भीतर इतनी आगे जा रही है लेकिन हिमाचल प्रदेश के नौजवान को क्रिकेट के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो मैदान नहीं मिल पाता है, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। बच्चे जाते हैं, चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं या प्रदेश की प्रतियोगिताएं दूसरे प्रदेशों में जाकर के खेल रहे हैं, तो उनको सुविधाओं के अभाव में कभी टीम जाकर के जो है वो सराय में रुक रही है, उनके लिए खाने का बेहतर प्रबंध नहीं है, उनके लिए इक्विपमेंट जो क्रिकेट का चाहिए वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं

0: एक टीस जो थी वो मन में रहती थी कि
1: जी
0: कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट के लिए किया जाए। तो यहीं से जो है वो जर्नी जो है इस यात्रा का आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की हिमाचल प्रदेश की यात्रा का आरंभ हुआ। और सबसे पहले यही दिमाग में था कि अगर क्रिकेट के स्तर को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे सुविधाओं को जुटाना होगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज था कि आज तो क्रिकेट में पैसा दिखता है, लेकिन एक समय वो दौर ऐसा था जब मन में तो बहुत कुछ था लेकिन हाथ में कुछ नहीं था। तो उसके लिए संसाधन जुटाने का प्रयास, फिर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल
1: जी
0: उस सरकार का नेतृत्व तो मुख्यमंत्री के नाते कर रहे थे, तो उनके समक्ष अनुराग ठाकुर जी ने और टीम ने एक प्रश्न रखा कि हम हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक सहयोग सरकार से भी चाहिए कि हम कम से कम सबसे पहले जो आवश्यकता रहती है क्रिकेट के लिए वो रहती है मैदान की।
1: जी
0: अगर मैदान होगा, अच्छा मैदान होगा, क्रिकेट के अनुरूप उस मैदान की जो है वो बनावट होगी, सुविधाएं होंगी, तो निश्चित तौर पे तभी जाकर के जो है वो एक ऐसा वातावरण प्रदेश के भीतर खड़ा किया जा सकता है कि क्रिकेट अगर को लगे कि उनके हित को सोचने वाला कोई तो आया है।
1: जी
0: तो उसी नाते निवेदन किया सरकार से कि हमें भूमि जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहीं उपलब्ध करवाई जाए। तो उसके चलते और भी जिलों में जो है वो इसको देखा गया कि कौन सी जगह उपयुक्त रहेगी, क्योंकि ये जो जगह है जहां पे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ है ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये जमीन थी। तो इसी को लेकर के जो है वो मन सभी ने बनाया कि यहाँ पे एक अच्छा मैदान जो है वो बनाया जा सकता है, बहुत सी चुनौतियां होने के बावजूद भी। सरकार के आगे जो है वो इसका निवेदन भेजा गया, मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और कैबिनेट के भीतर रखा, और उनकी कैबिनेट ने जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ को ये जमीन देने का फैसला किया, और वहीं से जो है वो इस यात्रा का आरंभ होता है।
1: जी
0: और 19 मार्च 2002 को उस समय के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग
1: जी
0: ठाकुर,
1: जी
0: तो इसका मिलकर के जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने इसका शिलान्यास, जो मैंने तारीख बताई है 19 मार्च 2002 को,
1: जी
0: इसका किया गया। और वहीं से जो है वो एक परिवर्तन की यात्रा
1: जी वहीं से शुरू
0: वहीं
1: हुई।
0: से शुरू हुई।
1: तो आप ये कहेंगे कि इस सपने को जिया है और इस सपने को शुरू जो किया है वो हमारे माननीय सांसद जो अनुराग ठाकुर जी हैं, उनकी देन है ये।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पे उनकी देन है, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो ये विचार अपने मन में लेकर के आए, और अपनी टीम जो उनके साथ हम
1: जी
0: जैसे लोग और भी
1: जी
0: बहुत से
1: जी
0: लोग जो है
1: जी
0: और जिला की क्रिकेट संघ हैं वो सब जुड़े थे, तो सबके सामने जब रखा तो सबने एक मत में जो है उसका समर्थन किया। लेकिन सिर्फ चुनौती यही थी कि जमीन मिलने के बावजूद भी जो है वो धन कहाँ से आए,
1: जी जी
0: क्योंकि बीसीसीआई के पास भी उस समय इतना धन नहीं होता था कि वो मैदान बनाने के लिए एकदम हमें कोई राशि प्रदान कर देते या सहायता प्रदान करते। तो बहुत सी चुनौतियों के बावजूद जो है वो इसका निर्माण कार्य आरंभ किया गया।
1: जी और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा हमारा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण है, दूरवर्ती भी है, काफी जगह जो है बहुत दूर है, आसानी से वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हिमाचल अपने आप में प्रतिभाओं का भंडार है। तो ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि HPCA उन प्रतिभाओं को खोजने के लिए और उन्हें जब प्रतिभाओं को खोज लिया है तो उसके बाद उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन से विशेष कार्यक्रम चला रहा है।
0: देखिए, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ पूरे प्रदेश के भीतर जो है वो हमारे सिर्फ धर्मशाला ही नहीं, हम इस मैदान के अलावा नदौन के भीतर एक बहुत अच्छा मैदान बनाया है जो कि
1: जी
0: फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रणजी तक के मैचेस वहां पे होते हैं, बिलासपुर में है,
1: जी
0: शिमला के गुम्मा में है,
1: जी
0: ऊना में है। इस तरह से इसके अलावा जो है वो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी ऐसी एकेडमीज जो है वो सब डिविजन लेवल पे भी हम जो है वो चलाते हैं, वहां के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए कोचिज की नियुक्ति की है, कोचिज को ट्रेनिंग दी गई है, तो वहां पे जो है उनको सहायता प्रदान की जाती है, तो वो बच्चे जो है आकर के वहां पे क्रिकेट खेलते हैं। इसके अलावा जो है वो क्योंकि लड़कियों की क्रिकेट जो है उसको भी बीसीसीआई ने अपने अंतर्गत लिया है, तो
1: जी
0: स्टेट एसोसिएशन जितनी भी हैं वो उन्होंने भी उसको अडॉप्ट किया। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश के भीतर जो आज जो हमारे चाहे रेणुका ठाकुर है, चाहे सुषमा वर्मा रही हैं,
1: जी
0: और भी खिलाड़ी रहे, हरलीन देओल जो कि पंजाब की रहने वाली थी लेकिन हिमाचल से क्रिकेट खेला है, तो वो ऐसे ऐसे प्रतिभाओं को तराश करके
1: जी
0: उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम जो है वो क्रिकेट संघों ने किया है। इसके अतिरिक्त जो है वो जिला क्रिकेट संघ जो है वो अपने स्तर पे अपने अंडर 14, अंडर 16 ऐसी सारी प्रतियोगिताएं, अंडर 19 हुआ, 23 हुआ, सीनियर्स का है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो हर जिला जो है वो अपने अपने

0: खिलाड़ियों के लिए ट्रायल का आयोजन करता है, जो खिलाड़ी हर एज ग्रुप में उसके भीतर ठीक बैठते हैं तो उनको सिलेक्ट करके इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अंतर जिला प्रतियोगिता क्रिकेट की रहती है उनके भीतर वो पार्टिसिपेट करते हैं और आगे बढ़ने का काम जो है वो उनको मंच प्रदान किया जाता है।
1: जी सर, और सर एक चीज ये बताइए, आपकी जैसे ये सारी ट्रायल्स के बारे में जानकारी या फिर आप कब समय समय पर कौन कौन से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं, ये सारी जानकारी क्या कॉलेज स्तर पर या स्कूल स्तर पर HPCA की तरफ से बच्चों को बताई जाती है?
0: हमारा जो है वो क्रिकेट संघ पूरे प्रदेश की क्रिकेट को नियंत्रित करता है और जितने भी अलग अलग एज ग्रुप्स के प्रतियोगिताएं होती है इंटर डिस्ट्रिक्ट तो उनकी जो है वो सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी, उसके बाद जिला क्रिकेट संघ है वो भी समाचार पत्रों के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको साझा किया जाता है और उसको युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और वहीं से जो है वो उसी को देख करके जो है वो वहां पे ट्रायल्स देने जो है वो वहां पे बच्चे आते हैं।
1: जी, और सर वैसे तो हर युवा जो है वो खेलना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो ऐसे में जो खेलों से जुड़े हुए दूसरे रोजगार के अवसर हैं जैसे खेल प्रबंधन हो गया, कोचिंग हो गई, फिटनेस एनालिस्ट और खेल पत्रकारिता, ये सारे क्षेत्र भी ऐसे हैं जो खेलों से जुड़े हुए हैं, तो क्या इस दिशा में भी HPCA जो है वो कोई अवसर हमारे युवाओं को उपलब्ध करवा रहा है?
0: देखिए, समय समय पे खिलाड़ी तैयार करने के अलावा कोचिज को तैयार करना, जिला स्तर पे कोचिज या सब डिवीजन स्तर पे जो है वो उनको अपने स्तर पे हम ट्रेनिंग देते हैं, जो अच्छे आगे बढ़ने की जिनमें जज्बा है वो उनके लिए जो है वो BCCI के जो कोर्सेज होते हैं, कुछ कोचिज के हैं, कुछ ट्रेनर्स के हैं, उसके अलावा जो है वो फिजियो के हैं, उसके अलावा स्कोरर्स हैं, अंपायर्स हैं, इस तरह हर तरह के जो है वो जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के ऐसे माध्यम रहते हैं, तो वहां पे जो जिसमें जितनी प्रतिभा होती है उस प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको पूरा योगदान जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ प्रदान
1: करता है। तो सर इन कोर्सेज के बारे में अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना
0: है? उसको हमारे यहाँ पे ऑफिस है स्टेडियम के भीतर ही, वहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है, हमारा क्रिकेट ऑपरेशंस जो सारे हिमाचल का देखते हैं उसके हेड जो है जनरल मैनेजर जो है वो वहाँ पे बैठते हैं, फिर इसके अलावा जो है वो जिला क्रिकेट संघ है वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी वो जानकारी ले सकते हैं, तो इसकी सारी जानकारी जो है वो जिसको भी चाहिए हो वो पत्र के माध्यम से भी वो फोन के माध्यम से भी वो ले सकते हैं और उसके अनुसार अपने कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर, और सर जैसा कि हमारा जो स्टेडियम है धर्मशाला का HPCA का स्टेडियम, यहाँ पर लगातार कोई ना कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कोई ना कोई मैचेस हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे कि पर्यटन को कितना लाभ मिला है हमारे शहर के या फिर स्थानीय व्यापार और युवाओं को क्या लाभ मिला है?
0: देखिए, हिमाचल प्रदेश वैसे तो पूरा प्रदेश जो है वो पर्यटन की दृष्टि से जुड़ा हुआ है, लेकिन धर्मशाला शिमला के बाद, शिमला और मनाली के बाद धर्मशाला पर्यटन के लिए जाना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सुविधाओं का अभाव यहाँ पे रहता था, और उस अभाव से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्यटक ही जूझते, हम भी जूझे हैं। हमने 2003-2004 के भीतर जो है वो स्टेडियम का निर्माण कर दिया, 2005 में यहाँ पे बोर्ड प्रेसिडेंट 11 यानी बोर्ड एकादश और पाकिस्तान की टीम का एक प्रैक्टिस मैच भी रखा लेकिन लगातार उसके बावजूद हम यहाँ पे हमारे ICC की जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो नया क्रिकेट सेंटर शुरू करने के लिए वेन्यू इंस्पेक्शन करती है, तो जब जब भी यहाँ पे वेन्यू की इंस्पेक्शन होती थी तो यहाँ पे होटल्स अच्छे होटल का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था, एयरपोर्ट पे रेगुलर फ्लाइट्स नहीं थी, तो उस वजह से जो है वो बहुत सारे मैचेस हमें नहीं मिले क्योंकि इसकी अप्रूवल जो है वो ICC की तरफ से नहीं मिलती थी। लेकिन आज आप देखिए कि 2010 में पहली बार IPL का आयोजन करने के बाद आज यहाँ पे हर तरह का जो है वो विश्व स्तरीय होटल यहाँ पे खुले हैं। यहाँ पे जिसको आप जाना जाता था जो धर्मशाला जो है वो एक सीजनल यानी कि अप्रैल मई जून के महीने का टूरिज्म जहाँ पे जाना जाता था, आज 12 महीने का टूरिज्म यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बनकर के उभरा है, और धर्मशाला जो है वो आज पूरे विश्व के मानचित्र के ऊपर जो है वो इसकी प्रतिभा, इसकी खूबसूरती, इसको क्रिकेट के साथ जोड़ करके देखें, पर्यटन के साथ जोड़ करके देखें, युवाओं के लिए जो है वो स्टार्टअप्स के बहुत सारे साधन जो है और मौके जो है वो लेकर के ये आया है, तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश की पर्यटन की आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में क्रिकेट संघ का और स्टेडियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान।
1: और सर क्या टेम्परेरी

0: तौर पर भी जब किसी मैच का आयोजन किया जाता है तो जो स्थानीय युवा हैं उनको कोई आर्थिक लाभ मिलता है या कोई वो व्यवसाय कर सकते हैं, या फिर मैच में उस दौरान उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है स्थानीय युवाओं की तो वो भी उसमें अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं क्या?
1: देखिए, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं और काफी इवेंट्स कंपनी जो है, जैसे IPL आता है,
0: जी
1: कोई और दूसरे मैचेस आते हैं, इवन BCCI की गेम्स भी यहाँ पे
0: जी
1: आती
0: जी
1: हैं, तो कोई टिकटिंग एजेंसीज हैं, कोई और अन्य तरह की है एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, तो वो निश्चित तौर पर अपने साथ बाहर के लोग लेकर के नहीं, मैनेजमेंट के 4-5 लोग आते हैं, बाकी जो है वो स्थानीय
0: स्थानीय
1: लोगों,
0: युवाओं
1: स्थानीय युवाओं को जो है
0: जी
1: वो एज वॉलंटियर उसमें काम दिया जाता है
0: जी
1: और उनकी प्रतिभा का जो है वो वहां पे लाभ उठा जाता
0: जी जी और सर आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि HPCA की भविष्य में क्या योजनाएं हैं कि वो और कितना इस खूबसूरत मैदान इसको और विश्व के पटल पर लेकर जाएगी।
1: देखिए, इसका जो है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि धर्मशाला इतना खूबसूरत जाहिर है और इस स्टेडियम की खूबसूरती इतनी है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान आज धर्मशाला के अंदर जितना पर्यटक आता है
0: जी
1: वो पर्यटन की दृष्टि से बाकी स्थानों के ऊपर तो घूमता ही है, के
0: वो
1: अलावा उसकी जो प्राथमिकता रहती है कि धर्मशाला के स्टेडियम को देखने
0: जी
1: जाना
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहा आपने ये
1: तो
0: तो।
1: यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाइंस लगती हैं,
0: हाँ
1: पंक्तियां
0: जी
1: लगती हैं
0: जी हाँ
1: पर्यटकों
0: जी
1: की
0: जी
1: अंदर जाने के लिए।
0: जी
1: तो निश्चित तौर पे ये जो उभर करके आई है, तो मैचेस के दिनों में भी यही रहता है कि हमारे पास 20,000 21,000 की कैपेसिटी है, लेकिन आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है और उनको यहाँ की खूबसूरती देखने का और क्रिकेट को देखने का मौका नहीं मिल पाता है। तो अनुराग ठाकुर जी ने पिछले दिनों भी जो है वो इसके ऊपर काफी गहरा अध्ययन किया है और इसकी कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने का प्रयास जो है वो हम कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक दर्शक जो है वो यहाँ पे आ सके और यहाँ की खूबसूरती का भी और क्रिकेट का भी आनंद ले सके।
0: जी तो हम ऐसा मान के चलें कि और भी अंतर्राष्ट्रीय बड़े आयोजन जो हैं वो हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे।
1: बिल्कुल, पूरी तरह से यहाँ पे धर्मशाला की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का ये मैदान, इसके अलावा भी जो है वो प्रदेश के जो बाकी मैदान हैं उनमें भी संभावनाएं खोजी जा रही हैं कि कहीं और भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान तैयार किया जा सकता है या
0: जी
1: नहीं,
0: जी
1: इसके
0: जी
1: ऊपर भी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ विचार कर रहा है।
0: जी और सर जैसे कि HPCA जो है वो प्रतिभाओं को तराश रहा है, नए टैलेंट को उभार रहा है, उन्हें मौका दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि किस तरह ये जो दूसरे लोग आपसे जुड़े हैं जो अपने रोजगार के लिए HPCA पर ही निर्भर हैं तो उनको किस तरह से आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है?
1: नहीं, देखिए, जो क्रिकेट के साथ जुड़ा है उसको
0: जी
1: तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मैच फीस या उसके अलावा जो है वो मैच फीस है, जब वो रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कोई कोचिंग की फील्ड में जा रहा है, कोई
0: जी
1: अंपायर की फील्ड में जा रहा है, इस तरह से कहीं ना कहीं वो है, लेकिन बहुत ज्यादा स्तर पे जो है वो, हालांकि जितनी खेलें देश में खेली जाती हैं सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो क्रिकेट ही
0: जी
1: है
0: जी
1: और हिमाचल प्रदेश में भी वैसा ही है, लेकिन जिस तरह की बेरोजगारी है उसके भीतर इससे अधिक योगदान तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ नहीं कर पाएगा,
0: जी
1: लेकिन फिर भी युवाओं के लिए भविष्य के रास्ते किस तरह से और खोजे जा सकते हैं इसके लिए एक प्रयास अवश्य किया जाएगा।
0: जी सर और सर एक चीज़ ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हिमाचल का जो क्रिकेट ढांचा है वो आज देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल का काम कर रहा है?
1: निश्चित तौर पे देखिए, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश था,
0: बिल्कुल
1: यहाँ की क्रिकेट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट का स्तर बहुत नीचा था, बहुत क्वालिफाइंग राउंड तक जो है वो हम नहीं पहुंच पाते थे और 2001 में इसकी जिम्मेदारी जब अनुराग ठाकुर जी और उनकी टीम के ऊपर मिली तो 2006-07 में हम देश के रणजी चैंपियन बन गए। तो
0: अच्छा
1: ये हिमाचल
0: जी
1: प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश और 4 साल
0: जी
1: की सुविधाएं मिलने के बाद जो है अगर
0: जी
1: क्रिकेट को पहुंचाया जा सकता है तो ये पूरे देश के लिए और बड़ी बड़ी एसोसिएशन जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा हैरानी वाला ये कदम था कि हिमाचल जैसा इतना सा छोटा सा प्रदेश आज क्रिकेट की दुनिया में जो है वो पूरे देश में अपना नाम कमा रहा है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सर आपने शुरू में बात की थी महिला क्रिकेट की, क्योंकि जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से महिलाएं भी पूरा जोश दिखा रही हैं क्रिकेट की इस फील्ड में, और कहीं ना कहीं पहले ये पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, तो आने वाले समय में HPCA की क्या योजनाएं हैं महिलाओं को और अधिक इस क्षेत्र में आने के लिए उत्साहित करने के लिए और एनकरेज करने के लिए?
1: देखिए, जिस तरह से मैंने कहा है कि जिला स्तर पे सब डिविजन स्तर पे लड़कों के लिए जो एकेडमीज हैं
0: जी
1: उसी तरह से जो है वो समान मौके जो है
0: जी
1: वो लड़कियों को भी दिए जाते हैं और विशेषकर धर्मशाला के भीतर तो हमने बहुत वर्षों से जो है वो लगभग पिछले आप कह सकते हैं कि 17-18 वर्ष से जो है वो रेगुलर एकेडमी जो है वो

0: वुमेन एकेडमी
1: अच्छा
0: यहाँ पे
1: जी
0: चलती है।
1: जी
0: आजकल उसको जो है वो नगरोटा के साथ एक स्थान हमने लिया है और वहाँ पे मैदान और सारा तैयार किया है, तो वहाँ पे वो लड़कियाँ ट्रेनिंग लेती हैं, लेकिन रेजिडेंशियल एकेडमी उनकी पढ़ाई लिखाई सारा जो है वो काम हिमाचल क्रिकेट संघ जो है वो देखता है। उनको तराशने का काम जो है वो हमारे क्वालिफाइड कोचेज जो हैं, क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, फिजियोज हैं, वो सारे उसके ऊपर काम करते हैं।
1: जी। और सर, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिमाचल का, मान लीजिए कोई दूरवर्ती गांव का एक बच्चा है जो इस समय आपका कार्यक्रम सुन रहा है और उसकी आंखों में भी ये सपना पल रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर बनना चाहता है, वो भी चमकना चाहता है, तो ऐसे में आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह का एक प्रेरणादायक मैसेज जो है वो आप अपने सभी सुनने वालों को देना चाहेंगे? जी सर।
0: देखिए, हमने पूरे प्रदेश के भीतर जो है वो क्रिकेटिंग सेंटर जिला स्तर पे, सब डिवीजन स्तर पे, जैसे मैंने बताया है
1: जी
0: उस
1: जी
0: तरह के हमने तैयार किए हैं, उनको तराशने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर उसकी सूचना किसी को नहीं पहुंच पाती है तो वो जिला स्तर के ऊपर जो है वो जिला के, हमारे 12 के 12 जिलों के भीतर जो है वो क्रिकेट संघ है, जिला क्रिकेट संघ है
1: जी
0: जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के साथ जो है वो संबंधित है,
1: जी
0: तो उनके साथ वहां पे संपर्क करके और जो भी एज ग्रुप के ट्रायल्स होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो कहाँ पे जाकर के अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी उनको मिल सकती है। नहीं तो धर्मशाला का जो क्रिकेट स्टेडियम के भीतर हमारा कार्यालय है, वहां से किसी भी जिला के लिए कोई भी जानकारी जो है वो अगर लेनी हो तो वो वहां पे मिल सकती है।
1: जी सर, और एक मैसेज जरूर दीजिए आप हमारे सुनने वालों को, जो युवा साथी सुन रहे हैं, तो एक मैसेज जानना चाहेंगे आपसे।
0: देखिए, जिस तरह से एक देश के भीतर वातावरण बना है और विशेषकर हिमाचल और पंजाब,
1: जी
0: उत्तर भारत के भीतर जो नशा जो है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इसको कहीं ना कहीं कुछ लोग क्लासिफाई कर देते हैं कि चिट्टा के साथ,
1: जी
0: मैं हर नशे को,
1: बिल्कुल
0: हर नशा जो है वो एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है। वो आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य जो है वो खराब करता है, समाज का भविष्य
1: जी
0: खराब
1: जी
0: करता है, और देश निर्माण की जिम्मेदारी, समाज निर्माण की जिम्मेदारी जो युवाओं को आगे जाकर के निभानी है उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनता है। तो जितना ध्यान हो सके वो खेलों के ऊपर दें,
1: जी
0: क्रिकेट के ऊपर दें, क्रिकेट के अलावा बाकी जितने भी खेल हैं वो
1: जी
0: भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उनके भीतर अपना ध्यान दें और अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण अपने भीतर करें और
1: जी
0: अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज को बनाने के लिए लगाएं और नशों से दूर
1: दूर
0: रहें।
1: रहे हैं, बिल्कुल सही। और सर, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने चलाया था खेलो इंडिया मूवमेंट और साथ में अग्निवीर योजना भी, वो इसीलिए चलाई गई थी ताकि युवा जो है वो नशे की कुरीति से बचे रहें और दूसरी तरफ अपना जो ध्यान है पॉजिटिव चीजों की तरफ, उनमें अपना इन्वेस्ट करें।
0: बिल्कुल, देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने खेलों को जो है वो एक साइड का, वो नहीं कि
1: बिल्कुल
0: टाइम पास के लिए नहीं, उसको
1: जी
0: एक अग्रणी
1: जी
0: भूमिका खेलों की जो है वो रहे। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे, चाहे ओलंपिक हैं, चाहे हमारी नेशनल गेम्स हैं, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हैं, तो पिछले 8-10 वर्षों में जो है वो वहां पे खेलों का स्तर भी बढ़ा है, खिलाड़ियों का स्तर भी बढ़ा
1: और
0: है और
1: मेडल्स भी
0: खिलाड़ियों
1: बहुत ज्यादा
0: की
1: आए हैं।
0: मेडल भी बहुत ज्यादा
1: जी
0: आ रहे हैं और समान मौके जो हैं वो
1: बिल्कुल
0: महिलाओं को और पुरुषों को वहां पे
1: बिल्कुल
0: प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और किसी भी देश के लिए जो है वो, उसका युवा
1: जी
0: अगर इस तरह से जो है खेलों के अंदर अगर अपनी भूमिका अदा कर रहा है तो निश्चित तौर पे आने वाले समाज के निर्माण के लिए भी वो अपनी भूमिका को अदा करेगा।
1: जी और सर, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, HPCA के भविष्य के रोड मैप, नई प्रतिभाओं को तराशने की योजना और धर्मशाला स्टेडियम से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ, हमारे सुनने वालों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी तरह के महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रमों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। अब मुझे यानी वंदना रैना को दीजिए अनुमति और हम आपको बता दें कि इस विशेष कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
3: जी दोस्तों, खेल आपको हारना नहीं बल्कि अगली बार और दुगनी ताकत से वापिस आना सिखाते हैं। और इसी के साथ आज के युवा मंच कार्यक्रम का समय हो गया है आपसे विदा लेने का।

चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जतेंद्र पाल सिंह और कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने। और अब आपसे विदा लेते हैं, अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, खेलते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। बाय बाय, टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ, मौजा गराई दिया। ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 पर और शाम 7:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस रात्रि 8:00 और 8:30 का समय रहेगा देशगान का। रात 9:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज के इस कार्यक्रम में नीलेश मिश्रा के लिखे हुए गीत हम आपको सुनवाएंगे। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात्रि 10:00 सुनिएगा और रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। पुराने फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत में रात्रि 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार शाम 6:00 और 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे और समाचार संध्या 8:45 पर News@9 रात 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 पर और 6:40 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम सुबह सुहानी प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 7:10 पर। 7:40 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग और गाने सुहाने, ये कार्यक्रम प्रसारित करेंगे कल प्रातः 8:30 पर। और कल प्रातः 9:00 का समय है कार्यक्रम गीतांजलि का। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। थोड़ी ही देर में यानी कि शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आज रात 12 बजे के बाद से चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यूनियन के पदाधिकारियों की राज्य सरकार व निगम प्रबंधन के साथ बातचीत बेनतीजा रही है और चालक व परिचालक अपने रुख पर अडिग है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारी यूनियन से जनहित में चक्का जाम न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA लागू किया है और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निहोत्री ने कहा कि यदि कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो चाबियां तुरंत सरकार को सौंप दें। इस बीच हड़ताल से पहले प्रदेश में आज से राज्य परिवहन निगम में चालकों की अस्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर अभ्यर्थियों ने भर्ती में भाग लिया। नाहन डिपो में चालकों के 25 पद भरे जाने हैं। नाहन के क्षेत्रीय प्रबंधक रामदयाल ने बताया कि चयनित चालक को प्रतिदिन 1500 रुपये वेतन दिया जाएगा।
1: बसें चलाने के लिए जो चालक उनको आज जो चयनित होंगे पास होंगे बस के लिए अगर हम उनको डिक्यूट करते हैं तो 1500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। ये पूर्णतः अस्थायी रूप से है। नाहन डिपो के लिए अभी 25 पद है चालकों के लिए। अभी हमारे पास 450 लोग पहुंच चुके हैं।
0: नाहन नगर परिषद में आज अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 7-7 वोट प्राप्त हुए। ऐसे में ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान को अध्यक्ष और भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा को उपाध्यक्ष चुना गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष उपमा धीमान ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगी।
2: हम सभी का जितने भी 13 पार्षद है और इसमें कोई काम में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हम सब एक हैं। इलेक्शन जब तक था तब तक की बात थी। अब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस ने भाजपा समर्थित पार्षदों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में से भाजपा समर्थित 7 पार्षद जीते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कानून में तोड़ मरोड़ कर स्थानीय विधायक को वोट का अधिकार दिलाया है।
3: हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, परंतु मुझे आज बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनकी पूरी कांग्रेस के भारी भरकम दबाव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट दिया। हिमाचल के इतिहास में यह बात दर्ज हो जाए कि किस तरह से जनता के मत को हाईजेक किया जाता है, वो हाईजेक किया गया।
0: राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद के विरोध में निगम कर्मचारी महासंघ ने आज धरना प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकुमराम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुल्लू, मनाली, रोहडू, रामपुर और कसौली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निगम के होटलों को बंद करने या निजी प्रबंधन को सौंपने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों व प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है और BOD की मंजूरी के बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। हुकुमराम ने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम घाटे में नहीं है।
4: आज प्रदेश सरकार हमारे जो 8 होटल है उन्हें ONM बेसिस पे देने की बात कर रहे हैं। हमारी जो कॉरपोरेशन है वो घाटे में नहीं है। हम इसलिए बात करते हैं कि जब से ये ONM की प्रथा सरकार ने लाई है ना, तो ये BOD में ये पास होके गई है, क्योंकि हमारे जितने भी एजेंडे होते हैं वो BOD ही उसके फैसले लेते हैं जो कि हमारे HPTDC के हैं, और इन्होंने बीच बीच में हमारी जो बुकिंग है वो भी बंद कर दी है। इसके बावजूद भी हमारे को ये पर्यटन निगम को ये बोलते कि घाटे में जा रहा है। हमने जब से सरकार बनी है हमने कहा कि हमें 50 करोड़ की आवश्यकता है। अगर ये 50 करोड़ अगर आप हमारे दी जाएगी इसकी ग्रांट के तौर पे, तो मेरे को लगता है कि हमारा टूरिज्म फिर से एक बार फिर अच्छी अपनी पटरी पे आ जाएगा।
0: किन्नौर जिला के पूह उपमंडल की रारंग पंचायत में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु सांगेस पर्व आज बौद्ध परंपराओं के अनुसार संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खराब मौसम के कारण समापन समारोह में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में बौद्ध गुरु छोगेन रिनपोचे ने इस पर्व का दीप प्रज्वलित कर समापन किया। उन्होंने कहा कि ये पर्व पिछले 55 वर्षों से मनाया जा रहा है और 8वीं शताब्दी के महान आचार्य गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। समापन समारोह में छम नृत्य और किन्नौर का प्राचीन रोला रोलाने नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। श्रोता लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सांझ। नमस्कार दोस्तों, ढलती हुई शाम, ठंडी हवाओं का एहसास और साथ में पुराने फिल्मी गीतों की मिठास, इससे बेहतर संगत शाम के समय और क्या हो सकती है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला। और आज सुरमई सांझ के इस कार्यक्रम में आपको ले चलेंगे उस दौर में जहाँ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। तो आइए यादों के इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी श्रोताओ, सचमुच इस गीत को सुनते ही लगता है जैसे शाम और भी हसीन हो गई हो। पुराने गीतों की खासियत ही यही है कि इनमें ना शोर है ना दिखावा, बस सच्ची भावनाएं हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं। और अगला गीत उस दौर की एक ऐसी आवाज़ का जादू है जिसे सुनकर ऐसे लगता है मानो समय ठहर सा गया है। फिल्म का नाम अभिमान और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हार्ड ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ ₹1999 डाउन पेमेंट और ₹1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स ₹72,100 तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना के साथ। जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ गीत हमें पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देते हैं। किसी पुराने दोस्त की याद, किसी अधूरी कहानी की याद या फिर किसी खास शाम की याद, इन्हीं एहसासों के सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

जी श्रोताओ, कहते हैं कि पुरानी तस्वीरें और पुराने गीत कभी बूढ़े नहीं होते। समय बीतता है लेकिन उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। और आज की इस महफिल का आखिरी गीत भी कुछ ऐसा ही सादगी भरा, प्यार भरा और खूबसूरत एहसासों से भरा हुआ। फिल्म का नाम याराना आवाज़ है किशोर कुमार की।

सुरमई सांझ फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां कराई दियां।

0: राम राम पंत साहब जी, राम राम। हाँ
1: राम राम जोधा राम जी कने दिखा। अज ट्याले पर झमाझम बारिश भी हुई और तो हाँ भी जड़े से अज साढ़े कन्ने मुलाकात जड़ी से हुई है ना।
0: बिल्कुल जी, सारे किसान भाइयों जी भी राम राम कने दिखा। पंत साहब जी, अज जड़ा झमाझम बरखा जड़ा हुई है संजय वेले च,
1: जी
0: इस विच जड़ा ऐसा दिन भर दी पूरी जड़ा ऐसा गर्माहट जड़ा ऐसा थोड़ी देर घटी गई है।
1: हाँ
0: कने हली तिकर जड़ा ऐसा असां दे ट्याले दे जड़ा पत्ते हली भी चुड़ा करदे मारे पर हला ना जी।
1: बिल्कुल
0: कने हल्की हल्की बूंदाबांदी जड़ा असां दे पर हला भी होती है, लेकिन असां जो आनंद बड़ा होंदा इन्हां बरखा दा भी आनंद ओहदा कने सोगी सोगी असां जो आनंद ओहदा अपने किसान भाइयों नाल गलबात करने दा।
1: बिल्कुल। और ट्याले पर जलू हाँ बैठे था थोड़ी जड़ी ऐसे बारिश भी घटी है और संजो भी जड़ी ऐसे कार्यक्रम जो जड़ा से पेश करने दा समय जड़ा से मिली है ना।
0: बिल्कुल जी, कने समय नहीं भी मिले है तो पंच साहब जी समय ये कढ़ना पौंदा
1: बिल्कुल
0: है ना
1: है।
0: जी, क्योंकि असा जो रही नहीं होंदा कि हाँ अपने किसान भाइयों ने जितने जल करी गल नहीं करना।
1: हाँ कुछ ना कुछ प्रबंध कर ही लेना
0: हाँ,
1: है ना।
0: कने असा दे किसान भाई भी जरा मारे बाजी रहते नहीं, ये भी जरा ने सै लोग गीतों की कहना जानकारियों की पाला जरा सा बैठे होंगे
1: बिल्कुल
0: है ना। कने असा भी देर नहीं करते, जानकारियां भी शुरू करते, कने सौगी सौगी असा लोग गीत भी शुरू करने है ना जी।
1: हाँ दिखा जानकारी तो मैं आंदे आंदे अज जलू कालू और अपने मुर्गियां ते
0: हाँ
1: दिखा था है ना, तो
0: हाँ
1: रास्ते में दिखे कालू में तो कुछ काले टाए
0: रंगे
1: किस्म
0: दे।
1: दे जड़े
0: हाँ
1: से मुर्गे पाले हो।
0: मम्मी बोला तिन्नी ग्राएं च भाई आस्ते आस्ते एक दो पहले तो मुर्गे तीन रखे होंदे सारे पर घरे
1: हाँ
0: च
1: हाँ
0: मुर्गे रखे
1: देसी
0: होंदे
1: नस्ल दे थे।
0: देसी नस्ल दे सारे रखे होंदे।
1: हाँ जी
0: कन्नै आस्ते आस्ते क्या तिन्नी काले रंगे दे रखना शुरू करी ते भाई यहाँ भी दिखने लगे भी काले रंगे दे क्या। कन्नै आस्ते आस्ते उत्ती तादाद वधी गई,
1: हाँ
0: कन्नै
1: हाँ
0: कुछ पखले बंदे भी दिते के घरे वेखण लगी पै दो सुना है
1: बिल्कुल
0: ना। तो पुछे भाई असा भी जाकर भी कालू राम है के गल भी
1: हाँ चक्कर
0: बोले।
1: के आए।
0: हाँ चक्करे बोले कि तुह सारे कुक्कड़ पाले बोलिया, कन्नै थोड़े वाले बोले कोई देसी अंडे भी बिकी जाते थोड़े बोले कन्नै कुक्कड़ भी बिकी जाते। मैं सोचा मैं कुछ अलग करता,
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: मुझे काले रंगे के कुकड़े बारे पता लगा बोले कड़कनाथ बोलिया। कहने इस
1: अच्छा
0: दाग जरा ऐसे बाजार च रही कहने इस जल्द भाव भी बड़ा अच्छा मिली जाता बोलिया, तो बोले लोग होंगे बोले तो अपना इतों।
1: हाँ कहने मैं देखिए कि सह जलू अंडे दी नहीं दसे ना मिंजो, तो अंडे भी से काले रंगे दे थोड़े थोड़े, तो इसका
0: हाँ
1: मतलब ये है कि तिनी बोले कि बाजारे चीज दी मांग भी ज्यादा और ये पौष्टिक भी ज्यादा ना।
0: पौष्टिक भी ज़्यादा कहने चलू कोरोने का टाइम चलिया है ना
1: अच्छा
0: पंच साहब जी, तलू जड़ा ऐसा कड़कनाथ जड़ा ऐसा है आया हाँ सामने
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: कड़कनाथ जड़ा अगर इसे हाँ से लेंगे तो इससे जड़ा ऐसा है असंधी इम्यूनिटी जड़ा ऐसा है आंधी रोगों ने लड़ने की शक्ति जरा सा बदनी है ना
1: जी
0: जी। अतः जरा लोग खाते ने है
1: हाँ
0: ना जी,
1: हाँ
0: तो तेना वास्ते सही है। कने अगर लखान देन तो फिर यहाँ चीज़ का कारोबार भी कर सकते है ना।
1: हाँ
0: कने
1: बिल्कुल
0: मुर्गी पालन करना एक कम करना जरा ऐसा बड़ा ही सही कम है, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी की सोगी सोगी मुर्गी पालन भी करके ना तो अहाँ की आमदनी जरा ऐसा बधी जाती।
1: बिल्कुल, साढ़े जिहड़े किसान भाई थे ना जी भले अच्छी जमीन होंगी खुली होंगी तो
0: हाँ
1: मुर्गी पालन का व्यवसाय जेड़ा से आसानी करने करी सकते।
0: करी सकते सही गल है। कने मुर्गी का पालन करने वास्ते कुछ एक गल्लां दा ख्याल रखना पौंदा,
1: जी
0: जियां कि अच्छी नस्ल दी मुर्गियां दा पहले अहें चयन करना पौना, जियां कि यहाँ कड़कनाथ दी गल कीती है तां इस
1: हाँ
0: तरह दी होर भी कई नस्ल होंदियां है ना जी।
1: बिल्कुल
0: और कुक्कड़ देखियो तो हाँ बड़े बड़े कुक्कड़ होंदे बड़ी बड़ी
1: बड़ी बड़ी
0: कलगा
1: कगली वाले
0: देसी
1: हाँ
0: आ बड़ी बड़ी कलगी वाले कहने देसी है ना जी। कन्नै मुर्गियां वास्ते जरा ऐसा है पहले तो अहें चयन करना पौना कि नस्ल कुल दी पालनी है, कन्नै मिक्स सारी पालनी सभी सही है।
1: जी
0: मुर्गियां वास्ते साफ कन्नै सुरक्षित एक शेड बनाना बड़ा जरूरी
1: हाँ
0: होंदा
1: ये तो बड़ा जरूरी है।
0: कन्नै टाइमे पर जरा सा संतुलित आहार कन्नै स्वच्छ पानी देना जरूरी है। गर्मियों से बचाव वास्ते टीकाकरण भी इतना जो करवाना पौंदा, कन्नै शेड की नियमित सफाई कन्नै स्वच्छता बनाना पौंदी, कन्नै अंडे वगैरह का संग्रह कन्नै विपणन जरा सा सही ढंग ने करना पौंदा, कन्नै
1: जी
0: मुर्गियों के स्वास्थ्य की निगरानी भी जरा सा करना पौंदी।
1: बिल्कुल और इस विच हाँ आ गई है कि गल करा दे कड़कनाथ मुर्गे दी हाँ पालन करना, तो ये भी एक देसी नस्ल का ही मुर्गा और इसका हाँ पालन जड़ा से इस दे मांस वास्ते अंडे वास्ते और कई तरह दे इस दे जड़े से हाँ उत्पाद जड़े से बनाते हैं जिससे कि बाजार विच इस दी अच्छी मांग जड़ी से रहती है ना।
0: जी
1: और देखे जाए तो इस मुर्गे जो जड़े से इस किस्म के जड़े मुर्गे ना तेना जो रोग जड़े से बड़े घट लगते हैं ना, यानी कि इस जो पालना जड़ा से बड़ा आसान है, यानी कि ज़्यादा रख रखाव का खर्चा जड़ा से नहीं पौंदा है
0: नहीं
1: ना।
0: बोलता सही गल है।
1: और कन्ने ही अहाँ अगर 50 चूजे से शुरुआत करिए तो इस वास्ते अहाँ जो जी कि तुम बोले कि सूखा हवादार सेट जड़ा से अहाँ बनाना
0: जी
1: और शुरुआती 4 से 6 हफ्ते जड़े से चूजे जड़े से हाँ गर्माहट माहौल से रखने न और कन्ने ही इन्हें संतुलित आहार हरा चारा स्वच्छ पानी का जड़ा से

0: सुविधा उपलब्ध करवानी है, और कन्ने कन्ने ही अहाँ जो
1: टीकाकरण भी
0: करवाना है ना।
1: बिल्कुल जी, टीकाकरण कराना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ी सारी बीमारियां जो असर छोटे जीबा से आ जाती है ना
0: जी,
1: कने समय की मांग कने जरूरत जो दिखी करी असं जो असर अगर पोल्ट्री फार्म जो अगर शुरू करना है तो अस जो है टाइमे तो शुरू कर सकते हैं
0: जी। बड़ा जोधा राम जी, सब तो बड़ा फायदा इन्हों का यही है कि इन्हों जो रोग जोड़े से बड़े घट लगते हैं ना, और पौष्टिक होंगे ने। अगर हाँ इन्हों का इस्तेमाल अपने भोजन च भी करते हैं तो उससे जो सारे रोग रोग रोधक क्षमता जी बधी जाती
1: है। बिल्कुल, कहने दिखा एक गल होर होंगी पंच साहब जी की, एक तो हाँ देसी की गल करा देना
0: जी जी,
1: एक होंगे बरूलर अंडे बरूलर बरूलर शेड बनाना पौंदा, कने बरूलर मुर्गियां जो ज्यादातर जो गर्मियों में जो पलदी ना
0: जी, जी
1: कि तो हीट दसी है ना सह बरूलर वास्ते बिल्कुल सही रहती है। कने अच्छी नस्ल के चूजे खरीदने, कने चारा कने पानी सही ढंग ने कराना, साफ सफाई रखनी, कने इस तरीके ने असं जो है मुर्गी पालन का कने पोल्ट्री फार्म का काम जो शुरू करी सकते
0: बिल्कुल। और इस जानकारी के बाद हम चलना लोक जानकारी की तरफ, और सुनना एक प्यारा दिया लोक गीत
1: जी।

0: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: तपन साहब जी,
4: जी
3: हाँ, लोग गीत सुने सब बड़ा बड़ी पुराना लोग गीत भाई है ना जी।
4: बिल्कुल
3: हाँ, कहना दिखा वर्खा दे पानी का भी थोड़ा जहा असर हुई है लोग गीत पर ना।
4: हाँ,
3: अहाँ दे पुराने पुराने लोग गीत जन सा है, कुछ ऐसे लोग गीत हैं जरा इसी हिटी वाले सुनने मिलते।
4: हाँ बिल्कुल,
3: बाकी और थी नहीं मिलने तुम जो तो इस कार्यक्रम की बस यही तक खासियत है ना जी, जानकारियों की सोगी सोगी जरा ऐसा है, मनोरंजन भी जरा ऐसा होंगे
4: जी। और इस ते बाद हाँ फिर तो जी इस गल जानकारी दी करनी है ना।
3: हाँ जी,
4: तो दिखा तो हाँ हूँ गर्मियों का मौसम जोड़ा से लगभग खत्म होने जो आया है ना
3: जी,
4: और बरसात जी हूँ आस्ते आस्ते बदनी है आने वाले समय च, क्योंकि हूँ सारा मौसम विभाग भी बोला था कि 27-28 तरीक के बाद जेड़े से सारे इतु क्षेत्र बिच भी जेड़े से बरसात शुरू होने वाली है। तो हूँ हाँ जो जेड़ा सा गर्मियों के दिन च खड्डा नालूं च बड़े नोईले है ना।
3: बिल्कुल,
4: तो इन दिन च हाँ जो जेड़ा सा हूँ सतर्क रहना है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो इस बिच जेड़े से खड्डा नालूं जेड़ा जल स्तर है लगातार बढ़ना ही होना है ना।
3: फिर दिखा मानसून जलू आंदा ना, बरसात जलू आंदी ना
4: जी,
3: है ना। तो इन दिन च अहां दे जनजीवन च बड़ा भारी जेड़ा सा फर्क पौंदा,
4: बदलाव होंदा,
3: बदलाव भी होंगे, क्या बड़े सारे कामकार जरा बरसाती ही होंगे, तो असं भी करना पौते
4: जी,
3: कुछ कामकार बरसात के पहले भी करना पौते। सर तो पहले असं जलवायु की गलबात करिए कि असं जहाँ उपरी पहाड़ी इलाके ने पर्वतीय इलाके, अगर इतों मानसून आता ना तो मानसून क्या हल्की हल्की ठंड भी होना शुरू हो जाती।
4: हाँ,
3: क्या इतों कहावत भी है, मतलब जल उबर है तलू सी
4: है
3: ना। तो इतों क्या होंगे कि जल जी अहम टियाला है इस टाइम है ना
4: जी,
3: टियाले के उपर के एरिया है जितों तुहाड़े घर भी है मेरे
4: भी,
3: तो इतों जो है जलू भी बरखा होना है, जितनी मर्जी बरखा धुप हो, लेकिन जलू बरखा होनी ठंड जरा
4: ठंड हुई
3: जाती, तो हली भी है। लेकिन निचले इलाके की गल करिए ना, निचले इलाके च उल्टा होता, तो तू ज्यादा बरखा होनी तो ज्यादा गर्मी निकल,
4: ज्यादा गर्मी
3: उमस निकलती
4: जी जी,
3: है ना। तो इस तरीके ने अहम खेतीबाड़ी भी जरा प्रभावित होती
4: जी,
3: है ना जी। कहना जी कि हाँ ऊपरी इलाके की गल करिए ना, कि जलू ऊपरी इलाके च बरखा होनी है तो हरी हरी घास जरा जड़ी बूटियां जरा बड़ी सारिया जरा सह लगी पौदियाँ, तो इस वास्ते अहम कुछ पुआल होंगे ना, अली भी पुआल होने के भेड़ बकरी पालक ने सह दारा का रुख जरा करते बरसात।
4: हाँ हाँ, दारा पर बैठे हो।
3: हाँ, दारा पर बैठे गए कि पहले बैलों का कम हों, तो थले सह जलू चावल की खेती करनी होंगी, मच्छा मुच्छा मच्छ वगैरह करके जोती जाती करी जरा सा पूरा जरा सह अपना कम खत्म चौला पाई करी जरा सह तारे चली जाते
4: चली जाते। हाँ,
3: है ना जी। क्या तिथु तो जरा सा पूरा दुध दही का जरा सा तिना का कारोबार भी चलता, क्या एक जरा सा तिना क्या आदमी हों सर रोज जरा सा दुमे त्रीय दिन या हफ्ते जी कद बारी जरा सा दारा से
4: चक्कर लगा चक्कर।

0: चीज है।
1: बाजार ग्राइंड च कि ए भाई कने इस तरीके ना हाँ घ्यू भी कड़े कने मक्खन भी आया कने दुध भी आया कने लस्सी भी आया कने इससे
0: जी
1: तो
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: लिया। तो बरसाती जरा सा लस्सी का सेवन था घटी कर दे तो इससे अच्छा है कि सा मक्खन वगैरह भी तो ज़्यादातर कड़ी
0: हाँ, खोआ
1: लेंदे
0: वगैरह या
1: खोआ
0: घी
1: वगैरह
0: वगैरह कट
1: हाँ
0: देने। हाँ
1: कर देने। तो इस तरीके ने जरा सा हाँ बरसाती जी कुछ ऐसे कम कारण जरा बरसाती होंगे
0: जी
1: है ना
0: जी
1: जी।
0: जी
1: ताली भी जल्लू असा तारे जाते ना ताली भी असं पुआल मिली जाते है ना जी।
0: बिल्कुल
1: कर तारा चा असा कहीं जाते क्योंकि कुछ धार्मिक यात्रा करना चाहते।
0: हाँ
1: हूँ
0: जी
1: गल करिए तो दिखा इस वक्त है तो हाँ जाता अहाँ का त्रिउंड का ट्रैक है
0: जी
1: कने त्रिउंड दे तो हाँ पारले वक्खे जाता ठठारना का ट्रैक है
0: जी
1: तो इसते पारले वक्खे चली जाता हिमानी चमुंडा का ट्रैक आई है
0: बिल्कुल
1: ना
0: बिल्कुल।
1: जी। तो इस इन्हें सारे जगह च जड़ा ऐसा है बिच बिच धारा
0: देवी
1: भी
0: देवता
1: होंगे देवी
0: बैठे।
1: देवते भी वास हों
0: हाँ
1: ना जी।
0: जी
1: तो इतों क्या कि रस्ते बिच जो बड़े सारे पुआल मिलते बड़े सारे गुआलू मिलते हैं ना जी
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: तिन्हां ने भी यहाँ की गलबात होंगी तो तिन्हां का जनजीवन जरा ऐसा है पशुओं वास्ता ही निछावर होंगे कारण पशुओं की सेवा वास्ते ही है जरा ऐसा करा नहीं होंगे। तो सारे काम कार बरसाती होंगे कारण बरसाती जरा ऐसा हरी हरी घास खाई के जरा ऐसा है बरसाती के बाद जरा ऐसा है करे वापस होंगे।
0: बिल्कुल, जलू वापस आते तो पशुओं का जो रंग रूप है सब भी बदलो ही
1: हाँ
0: आता है ना,
1: कहना
0: सेहत
1: पोलना
0: बड़ी
1: हाँ
0: होंगी।
1: कहना पोलना तो भी बदलो ही होता है
0: हाँ
1: ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कहना मैं तो बोलता कि मतलब जी पहले वाले लोग होंगे ना जिन्हें जिन्हें अपने घर है मतलब इतने पशु नहीं होंगे तो
0: जी
1: सब बाकी पोलना कहने चली जाते थे है
0: हाँ
1: ना जी। एक बार दिखना भी किस तरीके ने कहीं घरे दें जरा सा अपना आटा कहना छलियाँ दी रोटियां जरा सुपर टिक्कड़ बना दे बढ़िया करके खा
0: हाँ
1: दे
0: हाँ
1: पी दे
0: हाँ
1: कहना तारा च कुटिया च रह दे क्या बोलते थे ना जो जरा जे तारा दी होंगे है बढ़िया टपरियाँ
0: टपरी बनाई
1: हाँ
0: होंगी है।
1: टपरियों बच्चे जरा ऐसा रह दी होंगे है ना जी। तो एक अलग दिया जरा सा जनजीवन है सब बरसाती जहाज जो देखने को मिलता
0: बिल्कुल,
1: है जी।
0: और इस गलबात फिर बाद फिर ते यहाँ चलना लोक जानकार दी तरफ और सुनना एक और प्यारा दिया लोकगीत।
1: जी

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
3: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पंच साहब जी,
1: जी
0: हल्की हल्की जरा सा बूंदा पांदी है ना जी,
1: हाँ
0: कन्नै टियाले ते बोधियां हल्कियां हल्कियां ठंडी ठंडियां बूंदा सारे फिर कन्नै उपरे ते ऐसे ऐसे लोक गीत हुन है ना जी, कन्नै
1: जी
0: अपने अच्छे अच्छे लोक गायक हुन, तो दिखा कुदा मन नहीं जरा सा ना पहाड़ा च लगदा।
1: बिल्कुल। और हाँ जेड़ा से इस कार्यक्रम दे अंतिम पड़ाव च जेड़े से पुज गए हुण
0: जी
1: अपने किसान बाणी भाई ते जेड़े से लेंदे ने अनुमति,
0: हाँ
1: पर
0: जी
1: जाने ते पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रे अंकित दिमान और कन्नै प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह और हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
0: कन्नै जोधा राम जुदिया अनुमति।
1: अच्छा।

मौजा गराइंदियां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7 बजने को हैं थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का

0: पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमीसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Three people have died after a devastating roof collapse of an under-construction godown at Taratala area of Kolkata today. Contact has been established with the trapped people inside the debris, and water and oxygen have been provided by the rescue team. Efforts are underway to rescue them. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari visited the spot and inspected the site. He informed the media a report would be prepared by the Kolkata Municipal Corporation on the incident. He said a detailed information would be provided involving the Taratala accident tomorrow in the assembly. In Arunachal Pradesh, heavy rainfall and flash floods have caused widespread damage today at Neepko Colony in Bosa Yazili under Cape and Yor District. Authorities are assessing the extent of the damage and further details are awaited.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:10 हुए हैं, श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुने दे सारे किसान बागवान भाइयों दो कन्ने बच्चों जो भैनों जो जड़ा भी कार्यक्रम सुने दे रहे जोध राम दी राम राम
1: जी
0: कन्ने सोगी हैं मारे अज पंच साहब जी बैठे कन्ने पंच साहब जी जरा सह जना जानकारियों का पिटारू संभाली लिया कन्ने मंजू वाले लोग गीतों के पिटारू भी तो वहाँ संभाला
1: जी
0: है ना जी कन्ने दिखा टियाले हाल चाल तुम जो असा पहले दसी दिया कि टियाले जरा बरखा हुई होगा ठंड जरा सह हल्की हल्की लगा करती है।
1: हाँ जी जी जेड़े से नेरा हो करता था ठंड जड़ी से हो करती है बदा करती है, पर इसका भी इंतजाम जेड़े से हाँ कर लिया है, पलोड जेड़े से मारी लिया चादरी दा है ना।
0: बिल्कुल कन्ने दिखा हूँ जरा से बरसात होने वाली है ना पंच साहब जी इस
1: जी
0: जो बड़े सारे ख्याल रखने की जरूरत है
1: हाँ जी
0: ना जी इस बारे च हाँ गलबात करनी अपने किसान भाइयों ने लेकिन
1: हाँ
0: इससे पहले असा कुछ जानकारी दे लें
1: ता जानकारी आज साढ़े वाले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे है ना जी।
0: जी
1: तो ये केंद्र सरकार की योजना जी इसे वर्ष 2015 ते जेडे इसे चली चला करती है, और इस विच जेडे से साढ़े खासकर नौजवान युवा साथी जेडे ना जो कौशल प्रशिक्षण देना इस योजना का जेडा से मुख्य उद्देश्य है। इस दे सबसे पहले तो इस विच ये जेड़ा कौशल प्रशिक्षण है निशुल्क दिते जांदा, और उद्योगों की मांग के अनुसार यानी कि बाजार च किस तरह के कौशल की जरूरत है उस दे हिसाबे ने जेड़ा से इस विच प्रशिक्षण जेड़ा से दिते जांदा है।
0: हाँ जी
1: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जेड़ा से साढ़े जेड़े युवा साथी तिना जेड़े प्रमाण पत्र दिते जांदे ने, और रोजगार और स्वरोजगार दे विच जेड़े से उन्होंने सहायता की जाती कि अगे तिना जेड़े से काम करने तो इस वास्ते भी जेड़ा से तिना जो आर्थिक रूप से और कौशल विकास के तहत जेड़ा से तिना जो सहायता जी से दिते जाती है ना।
0: बिल्कुल जी
1: इस दे कन्ने कन्ने 35 दे अधिक क्षेत्र जेड़े से प्रशिक्षण दिते जाते हैं जिवें कि IT है, स्वास्थ्य है, निर्माण है, पर्यटन है, रिटेल है, इलैक्ट्रॉनिक्स है, अजकल तो AI चली पी है ना, इन सारी चीज़ों जेड़े से प्रशिक्षण दिया जाया करता हो ताकि साढ़े जेड़े युवा साथी तिना जो जेड़े से अच्छी आमदनी और रोजगार जेड़े से मिली सके।
0: बिल्कुल जी तो दिखा आता युवा जरा सा बहाना नहीं बनाई सकता कि असं जो जरा सा कम नहीं से सीखने का कोई मतलब स्रोत नहीं है
1: जी जी
0: तो जरा सा इस योजना का फायदा ले कि तो किसी भी जिस भी कमे च थोड़ी रुचि है
1: हाँ जी
0: जी कि तुम दसे कंप्यूटर है या इलेक्ट्रीशियन है या सिलाई है लड़कियों वास्ते भी है ब्यूटी पार्लर भी लड़कियों वास्ते है ना
1: हाँ
0: जी
1: जी हाँ जी
0: रिटेल हेल्थ केयर कन्नै मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह जरा सर ये सारे कम जरा है सह सीखी सकते कन्नै इस कमे के सीखने के बाद सह अपना काम शुरू कर सकते
1: बिल्कुल
0: है ना जी कन्नै इस विच और भी बड़े बड़े फायदे हैं ना जी
1: हाँ इस बीच सबसे पहले तो हाँ जेड़ा से साढ़े साथी हैं ये पता होना चाहिए कि आवेदन कुदू करना है ना
0: करना हाँ जी
1: इस वास्ते जेड़ा से एक ऑनलाइन पोर्टल है स्किल इंडिया पोर्टल, इस बीच जेड़ा से तुहां ऑनलाइन चेक कर सकते हो और उस बीच जेड़ा से इस बीच आवेदन भी जेड़ा से कर सकते हो, और पात्रता जी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए है साढ़ा बेरोजगार युवा कौशल दे इच्छुक जेड़ा से होना चाहिए और उसकी जी आयु है 15 से 45 वर्ष के बीच जेड़ा से आवेदक होना चाहिए।
0: हाँ जी
1: उसके कन्ने कन्ने कुछ एक दस्तावेज भी जरूरी होंगे जी कि आधार कार्ड है, पहचान पत्र होना चाहिए कोई इस विच फोटो लगी हुए है ना,
0: हाँ जी
1: और बैंक खाते का जोड़ा विवरण हो चाहिए,
0: हाँ जी
1: शैक्षणिक प्रमाण पत्र जोड़ा से 10वीं 12वीं का कोई
0: हाँ जी
1: सर्टिफिकेट भी जोड़ा से होना चाहिए
0: जी
1: कन्ने ही मोबाइल नंबर जोड़ा से चालू हालत होना चाहिए ताकि कोई भी OTP वगैरह जलू पंजीकरण कर दें तो इस बिच आई है आसानी कन्ने है ना। तो इस वास्ते हाँ नज़दीकी दे प्रशिक्षण केंद्र च जितू जोड़ा से चयन कर सकते कि साढ़े नज़दीक कौन दे जोड़ा से प्रशिक्षण केंद्र जोड़ा कि इस कमे जो सू सिखा करता है ना,
0: हाँ जी
1: जिस विच साढ़े जेड़े सरकारी ITI हुई है ना प्राइवेट ITI ने या फिर कन्ने ही साढ़े जेड़े कंप्यूटर संस्थान
0: जी
1: कौशल प्रशिक्षण दिया करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र च इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र च AI के क्षेत्र च है ना,
0: जी
1: इन सारिया ही चीज़ा जो हाँ जानकारी जी इस साढ़े स्किल इंडिया पोर्टल विच जेड़े से उपलब्ध है उतु पूरी जानकारी ले करी हाँ अपना आवेदन जेड़े से पंजीकरण ताई कराई सकते।
0: बिल्कुल जी कन्नै दिखा अगर असा अपना कम कार करगे तो सू जरा सा नौकरियों पर जरा सा निर्भर नहीं होना पौना क्योंकि अजकल क्या है कि नौकरियों के पिछे पे करी क्या होंगे कि अहं का युवा जरा है तिना की उम्र भी हुई है किस वजह से तिना का ब्याह भी नहीं हुआ था
1: जी
0: है ना जी बोलते नौकरी मिलेगी तो ब्याह करके पाइए अपना कम कार शुरू कर लिए ना कन्नै ना सौगी सौगी तो तैयारी भी कर सकते
1: बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल
0: अगर अपना कम कार सीखेगा तो तुम फिर कुछ गल की कोई कमी रहनी नहीं है ना जी
1: जी
0: कन्नै अजकल क्या है कि कारीगरों की जरा है बड़ी भारी जरूरत पौंदी
1: मांग है
0: हाँ मांग बड़ी भारी है कारीगर भी अजकल भाई दिखा ना तो हाँ एक ग्राएं दिखा तो कई बार एक ग्राएं तो एक प्लंबर मिलना है
1: हाँ
0: कहीं एक ग्राएं कितना कम हों कहीं एक ग्राएं तो कोई एक ही इलेक्ट्रीशियन मिलना है
1: हाँ जी
0: कहते सवाल इतना कम हों पाई है कि मैं अपने ग्राएं की दसा तो प्लंबर एक इलेक्ट्रीशियन का फोन नहीं चुकते
1: हाँ
0: सब बोलते भाई लगे लगे होना कि तेना चौ दिन बाद आते या आते नहीं भाई
1: आते नहीं
0: या
1: तब तो 10-10 दिन
0: हाँ
1: आते
0: तो भाई तो हाँ आप दिलाई लिया साहब की नौकरियों के पिछे भी पौना चाहिए ऐसी गल नहीं है लेकिन अगर तुम कोई

0: हुनर तो अगर हाथ लगी है ना
1: हाँ जी
0: तो फिर दिक्कत तो हाँ आपू सौगी सौगी गुरसी भी रोजगार दे सकते।
1: बिल्कुल। और दूजा दिक्कत हाँ अजक सड़कों में जोड़ा सा पैर पाने जगह नहीं, गड्डिया गड्डिया हो गई है ना,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: हाँ मोटर मकैनिक का भी काम जोड़ा सा सीख लिया, तो इससे भी
0: हाँ
1: जरा बड़ा फायदा है, क्योंकि दिक्कत तो हाँ हाँ मोटर अपनी गड्डिया जो जालू मकैनिक के बखे जाते थे ना दुकाना पर जाते थे, तो भीड़ लगी होंगी गड्डिया की, तो मते सारे काम जड़े इस तरह के ना, जिन्हें मांग जी इस बाजार में बड़ी है,
0: बिल्कुल
1: तो हाँ इस कौशल जो सीखी करी अपना काम करिए तो बड़ा ही बेहतर है
0: बड़ा
1: ना।
0: बेहतर रहना बिल्कुल जी। कने असा एक होर कम भी है इतों की जानकारी दे सोगी सोगी असा मनोरंजन भी करवाते हैं
1: जी
0: तवा किसान साथी सुन दे एक लोकगीत।

0: जीता इस लोकगीते बधाउना हाँ चलना भेंट वार्ता दी तरफ और सुननी एक जानकारी है ना जी।
1: जी किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पुजाइए, चाहे वह विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर उन्नत किसानां कन्ने की गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत महिला किसान अहां कन्ने जुड़ा करदे हन, ओवा करदे हन इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी अपना सबसे पहले नां दसा कन्ने कुतू तुहां दे घर न।
2: मैं शिवाली ग्राम पंचायत कटोरा ब्लॉक नगरोटा सूरिया ते।
1: तो शिवाली जी तुहां खेतीबाड़ी कर दे।
2: हां जी सर।
1: जी दिखा खेतीबाड़ी करने ताईया तुहां वाल जेड़ा सा कितना की जमीन रकबा है।
2: सर जमीन तो साड़े ले 10 कनाल पर जेड़ी 5 कनाल है हाथ सभी ची खेतीबाड़ी करा दे।
1: अच्छा, बाकी जेड़ी 5 कनाल है सा क्या खड़तर वगैरह कुछ बंजर है।
2: हां जी सर बंजर है, तिस भी चाहां थोड़े मेडिसिन प्लांट लगाने दी कोशिश करा दे कि आजकल जेड़ा सा लेडीज जेड़ियां ना सा वो मेडिसिन प्लांट लगा दे तिना ते हां जेड़े सा प्रोडक्ट तैयार करा दे।
1: तो जेड़ा तुहां दस्या ना कि तुहां वाल 5 कनाल दा रकबा, तिस विच क्या क्या खेती कर दे तुहां।
2: तिस विच सर हां आजकल लगाया अदरक लगाया कि अपने थोड़ी बहुत सब्जियां लगाइया।
1: छली दा बीज कौन लगाया हा तुहां, अपना घरे दा बीज है।
2: हां जी साडा घरे दा बीज है।
1: अच्छा, देसी चिटियां छलियां बांधे की लाल
2: चिटियां सर।
1: अच्छा, इस ते कन्ने जियां सब्जियां वगैरह भी लगांदे कुछ।
2: हां जी सर सब्जियां भी लगाने।
1: इस वेले क्या क्या सब्जियां लगियां तुहां दे सवाड़ुआं च।
2: भिंडियां लगियां, बैंगन लग्यो, कन्ने तोरियां वगैरह।
1: हां कन्ने दिखा चलो अपने घरे दी जलू हरी भरी ताजी जलू सब्जी होवे ते एक आनंद जेड़ा सा कुछ होर है। ते शिफाली जी जी तुहां दस्या कि तुहां कुछ जियां एक कोई महिला दा समूह ऐसा मिली के जेड़ा सा औषधीय पौधे पर भी जेड़ा सा काम करा करदे न।
2: हां जी औषधीय पौधे पर सबसे मतलब कि आजकल जेड़ा सा मिशन धनवंतरी चलिया साडे कांगड़े विच।
1: हां जी
2: इससे जुड़ी के जनानी जेड़ा सा बड़ा भारी महिलाएं जेड़ा काम मिला दा रोजगार मिला दा तिसी ने।
1: अच्छा
2: तिसी ना ते जुड़ी के हल्दी लगाइयो ता हल्दी दा सागे प्रोडक्ट बना दे जियां साबने दा काम चलिया आजकल साडा। कन्ने हां तुलसी लगाइयो जियां मतलब जेड़ी जमीना साडी जे तुहां खेती नहीं करदे ते तुहां तुलसी लगाइयो। तुलसी लगाई के तिसे फिर यहां अर्क निकालना, अर्क निकाल के तिसे तहां साबन तैयार करा दे।
1: जी तो एथु ही तुहां सारा ये काम जियां साबन वगैरह एथु ही तैयार कर लेंदे, अर्क कियां निकाल दे तुलसी दा।
2: तुलसी दा अर्क निकालने वास्ते मशीनां लगियां धर्मशाला पंचायत पद्धर च भी लगी मशीन। कन्ने फिर एक पट्टा जटियां फतेहपुर ब्लॉक च।
1: अच्छा यानी कि पत्ते पहले तुलसी दे पहले पत्ते इकट्ठे करने हैं ना।
2: हां जी पत्ते इकट्ठे करने या मतलब कि डालू समेत इन्हां दी हरवेस्ट कटिंग कर लेनी। अच्छा। मतलब पेड़ में समेत कटिंग कर ली थी ना।
1: फिर ये इंजी सुखाना पौंदे या सिन्ने दा निकलदा अर्क।
2: अर्क निकलदा अर्क जेड़ा से सिन्ने दा ही निकलना। कन्ने अगर जियां जेड़े हुन चले कि कन्ने करा दे हां चाय पर कम जियां हुंदे तुहाडी ग्रीन टी वगैरह है।
1: हां जी
2: तो तिसी पर कम चले तिसी विच हां कैमोमाइल दे लै दे पौधे।
1: अच्छा
2: एक कैमोमाइल हुंदा फुल हुंदा पीले रंग ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਪੰਖੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮਤਲਬ।
1: ਅੱਛਾ
2: ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ।
1: ਅੱਛਾ
2: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀ ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਪੈਸਾ ਬਣਾਣੀ ਹਰਬਲ ਟੀ ਬਣਾਣੀ ਇੱਕ।
1: ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿ ਸੋਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
2: ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਕੰਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ
2: ਵੀ ਚਲੇ ਪੋਣਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਜੋ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਿੰਜੀਆਂ ਮਤਲਬ 4 ਜਾਂ 5 5 ਲੇਡੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਦੇ।
1: ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਟੋਰੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਈਆਂ।
2: ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੱਥੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਅਰਕ ਪਾਇਆ,
1: ਹਾਂਜੀ
2: ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ
2: ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਤੀ, ਫਿਰ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਇਓ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਲ ਤੁਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਂ ਇਹ ਕੁਤੋਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਈ ਕੇ
2: ਇਹ ਸੇਲ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਲੌਕ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੌਕ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੀਰਾ ਸ਼ੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਲੌਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
1: ਹਾਂਜੀ
2: ਗੋਟਾ ਸੂਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
1: ਅੱਛਾ
2: ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੋ ਨੂਰਪੁਰ ਬਲੌਕ ਤੇ ਥੀ ਆਈ ਹੋ ਭੇਜਿਆ ਥਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪ ਸੋਚ ਕਿ

0: बनाई के।
1: अच्छा तो जी एक टिक्की मंदिर या साबण ये दिया था इधर क्या पा क्या ऐसा एक टिक्की ये था
0: एक टिक्की सर 35 रुपए दी 75-80 ग्राम दा वेट होना दिता।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: जी बड़ी अच्छी गल दिखा कि प्राकृतिक विधि करना पूरी जड़ी बूटियां करना नहाने वाला साबण भी जड़ा सा तो हाँ तैयार करा कर दिया ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी तो इस तरह तो हाँ कुछ पहले ट्रेनिंग वगैरह भी लिया कुछ सीखिया कुछ ये काम तो हाँ
0: ये ट्रेनिंग ले यहाँ मतलब की लेडीज थी ब्लॉक नगरोटा सुरें ते नाना पंचायत दे कर दे थे काम से।
1: हाँ जी
0: तीन यहाँ सद्या मतलब अपने कार्य सद्या मैं मिले हाँ जो भी दिया ट्रेनिंग वहाँ भी ये काम शुरू करना।
1: अच्छा
0: क्योंकि पहले यहाँ तुलसी वगैरह नहीं लगाई है पिछले साल था इस करके हर यहाँ मतलब आर्क वगैरह जी अगर सब कुछ खरीदना पवा ता फिर बड़ा महंगा काम है।
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्योंकि साबने का बेस होंगे सब खरीदना पौधा हाँ जो
1: जी बिल्कुल
0: कने और मैं सारी महिलाएं जानकारी दें कि जी सारे ब्लॉक नगरोटा सूरिया दता इतो फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है मतलब सेंटर गवर्नमेंट ते अपॉइंटेड लोग ने तिथू तो सारे किसान जुड़े हाँ तो तिथू हाँ जो चीजा हाँ मतलब की अपनी जड़ी भी हाँ उगा दे तिथू सेल आउट करी सकते पर सारी ऑर्गेनिक तरीके ना होता।
1: अच्छा
0: तुलसी भी तीना खरीदी लेनी कैमोमाइल लगा दे अच करा हाँ
1: हाँ जी
0: सभी तीना खरीदी लेना हल्दी है सभी तीना खरीदी लेनी हर चीज जड़ी हर्बल चीज होंगी सब तीना खरीदी लेनी मतलब की एक तो हाँ जो सेल करने की कोई प्रॉब्लम नहीं दी।
1: हाँ जी
0: मैंने दूसरा है की जिन्होंने जुड़ी के हाँ जो है की मतलब मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है
1: जी
0: तीना खुद मार्केटिंग करनी उन साबन है हारा था सर साबन जरा सा मैं टेस्टिंग वास्ते दे थे तीना हारे हो ये 4-5 दिन निकले हो साबने मतलब टेस्टिंग होता साबन हारा पे ही ऑर्गेनिक है कि कुछ हाँ केमिकल के नहीं मिक्स किता।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जरा सारा अदर स्टेटा भी जाई के सेल होना मतलब से हानी सेल करना से सीधे खुद FBO वाले सेल करना मतलब जो फूड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है ब्लॉक नगरोटा सूरिया दे तीना सेल करना।
1: अच्छा यानी कि इसने तो हाँ जो आसानी हुई यानी तो हाँ वाल जितना भी उत्पाद होगा तो हाँ तीना ये देना आगे जड़ा सा तीना बेचना है
0: तीना सेल करना आगे तीना बेचना आगे जाके लोकल मार्केट है मतलब जिया हाँ लोकल सेल करा दे सह मतलब जिया डिमांड आई जाती तो हाँ घर तैयार करी दे जिया जिसे चाहे तो होगा साबण अज बोले तो सह हाँ कल तीन सवेरे तैयार करके दे देना।
1: अच्छा
0: हाँ जी अपने लोकल तीन सेल करा दे भाई
1: जी तो जी औषधि पौधे चाहिए तो दसिया तुलसी है इससे सोगी और कौन कौन पौधे लगाए हो ना
0: मतलब तुलसी है अश्वगंधा है
1: हाँ जी
0: सर्पगंधा है।
1: अच्छा अच्छा
0: अश्वगंधा सर्पगंधा इन्हां दी जड़ां जड़ी है ना सह सेल होंदियां।
1: अच्छा
0: हाँ जी इन्हां दी जड़ां कटनियां जलू मतलब पत्ते भी हो जाते पर ज्यादा जड़ी कीमत है जड़ां दी मिलदी इन्हां दी दी।
1: अच्छा
0: बाकी सारा यही काम चलिया औषधि पौधिया पर चल लिया मैं तो बोलती की जनानी जरा घर बैठी के काम है औषधि पौधिया का करना
1: बिल्कुल। हाँ जी
0: कहने इस बीच पंचायत जड़ी है ब्लॉक जड़े से बड़ी हेल्प करा दे।
1: अच्छा शिफाली जी इससे बाद जिया गल करते हैं इससे सोगी जिया औषधि पौधे तो हाँ जड़े से लगा करते हैं सोगी जिया कुछ और फलाने पौधे भी लगाए जिया बागवानी की गल करिए
0: सर बागवानी जी बड़ी ज्यादा नहीं अपने यहाँ घरे तक की जी मतलब हर दो दो तीन तीन पेड़ सब कैसी दे अमरूद संतरे अंब।
1: अच्छा जी कुनी औषधि पौधे अगर लगाने होन या तो हाँ ते लैने होन तो तिना जो पौध कुतु मिल है कुतु संपर्क करन जेड़े तो हाँ जो सोना करते ने इस वेले
0: सर मतलब कि हर ब्लॉक से जड़ी से नर्सरी दी हो मतलब कि पूरे ब्लॉक से दो दो नर्सरियां ना।
1: हाँ जी
0: जड़े औषधि प्लांट ने सत्ती नहीं उगाने मतलब कि हर कोई नहीं उगा सकता मतलब बेंडर बंदे एक बेंडर टाइप होंदा।
1: हाँ जी
0: सत्ती नहीं सेल आउट करनी जड़े नर्सरी लगाने थी ना।
1: अच्छा यानी कि अगर कुसी यो औषधि पौधे अगर चाहिए हो तो सह अपने ब्लॉक च संपर्क करने की दसा हाँ। हाड़े ब्लॉक च औषधि पौधे कुछ मिल सकते हैं शिफाली जी इसके बाद तो हाँ जड़ा सह आहां दी जड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है जड़े की नौकरियां पिछे तां घूमा कर दे कने देखा नौकरियां नहीं भी मिला कर दी तीने तो हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: हाँ जी तीने तो मैं ही संदेश देना चाहूंगी कि तू हाँ औषधि पौधे लगाओ।
1: हाँ जी
0: कहने तीने सेल करा तीने अपने तरीके ने आज उन ता मतलब शैम्पू खुद बिल्कुल प्राकृतिक तरीके ने शैम्पू बनाना भी दस्ता दे अचार पाना भी दस्ता दे हर चीज दस्ता दे एक बंदे काम करने का पता होना चाहिए कि मैं ये काम करना मैं लाइन लैनी है हूं मैं काम करा तो मैं कली नहीं रोजगार ला दी मैं अपने ने पांच और भी जोड़िया कहने शायद हाँ कुछ और काम करना तो इससे पांच और भी तक मतलब इससे जरा से घर बैठी जड़ियां बेरोजगार लेडीज ने तीने भी काम जाने की जरूरत भी नहीं क्या हाँ जो कुछ मेहनत करना हाँ बाहर जाना कमाना अपने घर बैठे के आराम में ने कम करना अरे एक जगह इकट्ठे होके काम करना सा।
1: जी शिफाली जी ग्रां कटोरा नगोटा सूरिया दे तो हाँ आहां कने आकाशवाणी धर्मशाला दे टियाले पर इत्थों तो हाँ जुड़े अपना कीमती समय तो हाँ आहां जो दिता तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तादिका पंत साहब जी अहां दे उन्नत किसान महिला ने वही गलबात अहां सुनी
3: जी
2: कने इन उन्नत किसान महिला ने अपनी गलबात सांझा की कने दस्या कि किस तरीके ने जड़ा ऐसा है ये घरे विच ही कई अपने रोजगार वास्ते कई सारे जड़ा ऐसे चीज़ा बना कर

0: बिल्कुल
1: है ना जी, जी कि दस्या कि साबण वगैरह भी बने बड़ा कुछ चीज़ें बनाइया तो हानि महिला जरा सा घर बैठी कर भी अपना रोज़गार जरा सा खेती के बारे खेतीबाड़ी के सौगी सौगी अपना रोज़गार भी चलाई सकती हैं बड़े
0: जी
1: सारे कम कार करके, जियाँ कि यहाँ पहले मुर्गी पालन के बारे जानकारी दी ही है ना
0: हाँ
1: जी,
0: जी
1: तो बड़े सारे ऐसे कम कार जरा कि अस खेतीबाड़ी के कन्ने कन्ने करी सकते कि चलो भी यहाँ कोई अपना खेतीबाड़ी से कोई भी यहाँ चीज़ उगाते सब्जियां उगाते हैं अनाज उगाते हैं तो तिना दे असों मंडी भाव भी पता होना चाहिए पंच साहब जी, क्या
0: बिल्कुल
1: बोलते तो हाँ
0: बिल्कुल जो राम जी थोड़ा इशारा में समझा करता कि सू जो जागरूक रहना चाहिए और साढ़े जे नज़दीकी दे मंडियां ने सब्जी दियां ने या और अनाज दियां तो तिना का भाव सू पता होना जरूरी है ना। तो सब तो हूँ हाँ गल करिए कांगड़ा सब्जी मंडी दी, तो इस बीच आलू 11 से 13 रुपये प्रति किलो रहा, प्याज 24 से 28, टमाटर 32 से 36, लहसुन 120 से 140, अदरक 130 से 140 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च 45 से 55, अरबी 32 से 35, खीरा 22 से 27, मटर 90 से 100, फूल गोभी 50 से 55, बंद गोभी 15 से 17 रुपये प्रति किलो, बैंगन की गल करिए तो 20 से 25 रुपये प्रति किलो, कद्दू 12 से 15, मूली 20 से 25, टिंडा 30 से 35, पालक 30 से 35 रुपये,
1: हाँ
0: हरी
1: जी
0: मिर्च रही है 28 से 30 रुपये
1: हाँ
0: प्रति
1: जी
0: किलो।
1: कन्ने धनिया की गल करिए तो धनिया रिया 90 से 100, कन्ने तोरी 24 से 25, भिंडी 25 से 32, घीया 18 से 25, कटहल जड़ा सा 40 से 50,
0: जी
1: करेला 22 से 25, फ्रासबिन 80 से 90, गाजर 25 से 30, मशरूम 180 से 190, कन्ने कुछ जड़ा अंसा है इसके बाद फलों के भाव भी इन्हें साल है ना जी।
0: हाँ जी
1: तो फलों में जरा सारे पहले सेब 130 से 150, केला 40 से 50 प्रति दर्जन, अनार 150 से 170, अनानास 40 से 50, अमरूद 80 से 100, मौसमी 90 से 100, पपीता 40 से 45, कन्ने खरबूजा 20 से 30, तरबूज जरा सा 10 से 15, कन्ने आड़ू भी जरा सा मार्केट चाहिए तो 50 से 65 प्रति किलोग्राम रहा, पलम भी जरा सा है ना 60 से 90 प्रति किलोग्राम, चेरी जरा सा 250 से 300, लीची 90 से 120, कन्ने अंब जरा ने 60 से 70, अंब तोता जरा सा 40 से 50, कन्ने अंब दशहरी जरा सा 40 से 50, कन्ने
0: जी
1: नींबू जरा सा 65 से 70 रुपये किलोग्राम के हिसाब ने रहा, कन्ने कीवी जरा है 50 से 52 रुपये प्रति पीस, कन्ने लुंगड़ू जरा कि बरसाती गर्मी बरसाती दिखने मिलता है
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: लुंगड़ू जरा सा 25 से 30 प्रति रुपये किलोग्राम, कन्ने माल्टा जरा सा 100 से 110 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब ने रहा।
0: जी ता ये तो थे आज दे कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक भाव, और इसके बाद हाँ फिर ते चलना लोक जानकार दी तरफ।
1: जी

0: पंच साहब जी
1: जी
0: दिखा लोग गीत ते सोगी सोगी गलबात भी बड़ा जरूरी होंगी ना।
1: बिल्कुल
0: कन्ने अपने किसान भाइयों दिखा टियाले की गड़ी भी आस्ते आस्ते सारे लग पीजू करना, लेकिन असं ये गलाना चाहते कि बरसाती के दिन जो हम आने वाले ना
1: हाँ
0: बरसाती के दिनों में खड्डा ना मत खासकर दूर रहना
1: दूर रहना और अपने पशु जड़े से तिना जो भी इन्हें दूर ही रखना है ना।
0: हाँ बिल्कुल जी, कन्ने सोगी एक होर बरसाती असं कम कार करते हैं बाग बाग बगीचे लगाने का पौधे रोपण का कम भी जरा इन्हें बरसाती से करते हैं क्योंकि जड़ से अच्छी जड़ा सा पकड़ो जी है कन्ने पौधे जरा जरा सा हाँ लगाई सकते कन्ने पौधे रोपण अभियान में भाग भी ले सकते कन्ने अपने वे अभियान भी जरा सा चलाई सकते। तो इस तरीके ने अहम युवा साथी जरा सा जरूर इस कमी पर ध्यान देन
1: जी। तो जोधा राम जी इस गलबात कन्ने हुण अंत च अहां एक होर जिहड़ा लोक गीत सुनना है ना
0: जी, तो सुन दे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। शाम के 7:42 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज की मुख्य समाचार। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने चक्का जाम करने का फैसला लिया वापस, अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे कर्मचारी। कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान चुनी गई नाहन नगर परिषद की अध्यक्ष, भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा बने उपाध्यक्ष, वहीं चंबा पंचायत समिति पर भाजपा का कब्जा। सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिला में मारकंडा नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन, हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ। किन्नौर जिला के रारंग में राज्य स्तरीय गुरु सांगिस पर्व संपन्न, छम नृत्य बना आकर्षण का केंद्र और

0: पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज रिकांगपियो में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी यूनियन ने आज आधी रात से चक्का जाम करने के फैसले को वापस ले लिया है और अब कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अब से कुछ देर पहले शिमला में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में कर्मचारी यूनियन ने यह निर्णय लिया। ये बैठक सफल रही और सरकार ने कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को मान लिया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज दोपहर शिमला में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारी यूनियन से जनहित में चक्का जाम करना की फैसले को वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA लागू किया है और हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया था।
1: चक्का जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने हिमाचल प्रदेश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ESMA लगा दिया है। बसें चलाना जो है उतनी ही जरूरी है जितना जो है कुछ सर्विसेज और जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रदेश को सेवा देती हैं। कर्मचारियों ने जाना है, स्टूडेंट्स ने जाना है, लोगों ने कहीं जाना है। बसेज चलाने के लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे वो कदम हम उठा रहे हैं। हमारा कर्मचारियों से ये आग्रह है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं और नो रिटर्न पॉइंट पे ना पहुंचे। जो फैसले वो ले रहे हैं, सरकार को भी अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे।
0: नाहन नगर परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए गए। कांग्रेस और भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 7-7 वोट प्राप्त हुए। ऐसे में ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से चुनाव करवाया गया। इसमें कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान को अध्यक्ष और भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा को उपाध्यक्ष चुना गया। नव निर्वाचित अध्यक्ष उपमा धीमान ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर शहर के विकास के लिए कार्य करेंगी।
2: हम सभी का जितने भी 13 पार्षद है और इसमें कोई काम में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हम सब एक हैं। इलेक्शन जब तक था तब तक की बात थी, अब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा समर्थित पार्षदों को डरा धमका कर अपने पक्ष में करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाहन नगर परिषद के 13 वार्डों में से भाजपा समर्थित 7 पार्षद जीते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कानून में तोड़ मरोड़ कर स्थानीय विधायक को वोट का अधिकार दिलाया है।
3: हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए, परंतु मुझे आज बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और उनकी पूरी कांग्रेस के भारी भरकम दबाव के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट दिया। हिमाचल के इतिहास में यह बात दर्ज हो जाए कि किस तरह से जनता के मत को हाईजैक किया जाता है, वो हाईजैक किया गया।
0: उधर चंबा पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सदस्यों ने बाजी मारी है। आज हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर काजल कुमारी और उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह विजयी रहे। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 9-9 मत पड़े और पर्ची सिस्टम के माध्यम से भाजपा समर्थित काजल कुमारी विजयी रही। उपाध्यक्ष पद पर हेम सिंह ने 2 मतों से जीत हासिल की। भाजपा कल 25 जून को पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मौके पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कल शिमला में होने वाले संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल मुख्य वक्ता होंगे, जबकि 27 जून को पालमपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करेंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद सुरेश कश्यप ने आज कालाअंब पांवटा साहिब राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मारकंडा नदी के ऊपर बने 180 मीटर लंबे खजूरना पुल का उद्घाटन किया। इस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज व्यस्तता के कारण इस पुल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण नहीं कर सके। इस मौके पर सुरेश कश्यप ने कहा कि इस पुल के बनने से हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सड़कों के निर्माण के लिए

0: भरपूर धनराशि दे रही है।
1: बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे जिला सिरमौर और विशेष रूप से देहरादून को जाने जाने वाले हमारे यात्री हैं या पर्यटक हैं उनको होने वाला है। ये पुल जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और लगभग 3.5 वर्षों में इसको पूरा किया, 2022 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 22,190 करोड़ निवेश के लगभग 35 प्रोजेक्ट जो कि 545 किलोमीटर के लगभग हैं, इसका जो है काम चल रहा है।
0: किन्नौर जिला के पूह उपमंडल की रारंग पंचायत में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय गुरु सांगेस पर्व आज बौद्ध परंपराओं के अनुसार संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू खराब मौसम के कारण समापन समारोह में शामिल नहीं हो सके, ऐसे में बौद्ध गुरु छोगेन रिनपोछे ने इस पर्व का दीप प्रज्वलित कर समापन किया। उन्होंने कहा कि ये पर्व पिछले 55 वर्षों से मनाया जा रहा है और 8वीं शताब्दी के महान आचार्य गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। समापन समारोह में छम नृत्य और किन्नौर का प्राचीन रोला रोलाने नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत तो विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आज रिकांगपियो में ITBP के बेस कैंप में समापन हो गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने सीमांत क्षेत्रों में बिताए अपने अनुभव साझा किए। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण और सीमावर्ती गांवों के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ITBP के उप कमांडेंट वरेंद्र सिंह और माई भारत के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा भी इस मौके पर मौजूद रहे। राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की कवायद के विरोध में निगम कर्मचारी महासंघ ने आज धरना प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हुकुमराम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुल्लू, मनाली, रोहडू, रामपुर और कसौली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निगम के होटलों को बंद करने या निजी प्रबंधन को सौंपने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नियमों व प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है और BOD की मंजूरी के बिना ही फैसले लिए जा रहे हैं। हुकुमराम ने कहा कि राज्य पर्यटन विकास निगम घाटे में नहीं है।
2: आज प्रदेश सरकार हमारे जो 8 होटल है उन्हें ONM बेसिस पे देने की बात कर रहे हैं। हमारी जो कॉरपोरेशन है वो घाटे में नहीं है। हम इसलिए बात करते हैं कि जब से ये ONM की प्रथा सरकार ने लाई है, ना तो ये BOD में ये पास होके गई है, क्योंकि हमारे जितने भी एजेंडे होते हैं वो BOD ही उसके फैसले लेते हैं जो कि हमारे HPTDC के हैं, और इन्होंने बीच बीच में हमारी जो बुकिंग है वो भी बंद कर दी है। इसके बावजूद भी हमारे को ये पर्यटन निगम को ये बोलते कि घाटे में जा रहा है। हमने जब से सरकार बनी है हमने कहा कि हमें 50 करोड़ की आवश्यकता है। अगर ये 50 करोड़ अगर आप हमारे दी जाएगी इसकी ग्रांट के तौर पे, तो मेरे को लगता है कि हमारा टूरिज्म फिर से एक बार फिर अच्छी अपनी पटरी पे आ जाएगा।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिला में चुवाड़ी के छिंज मेले के स्वरूप को बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने आज इस पारंपरिक छिंज मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पठानिया ने कहा कि ये छिंज मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है और इसमें देश के कई नामी पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय जिला स्तरीय पीपलू मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने तनोली से बलह खालसा गांव को जोड़ने वाली सड़क को मजबूत करने के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। HRTC कर्मचारी यूनियन ने चक्का जाम करने का फैसला लिया वापस, अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे कर्मचारी। कांग्रेस समर्थित उपमा धीमान चुनी गई नाहन नगर परिषद की अध्यक्ष, भाजपा समर्थित प्रदीप सहोत्रा बने उपाध्यक्ष, वहीं चंबा पंचायत समिति पर भाजपा का कब्जा। सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर जिला में मारकंडा नदी पर नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन, हिमाचल व उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ। किन्नौर जिला के रारंग में राज्य स्तरीय गुरु सांगेस पर्व संपन्न, छम नृत्य बना आकर्षण का केंद्र और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आज रिकांगपियो में संपन्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी एक साथ रिले किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए अब सुनिए रोजगार समाचार। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग द्वारा जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती सूचना के रोजगार समाचार इस प्रकार से हैं। आपको सूचित किया जाता है कि जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरास्टाफ के विभिन्न पदों को अंशकालिक घंटे के आधार पर भरे जाने हेतु रोजगार सूचना जारी की गई है। उक्त भर्ती का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद भरे जाने हैं, पैरा फिटर के 3 पद, मल्टीपर्पस वर्कर के 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 साय 5 बजे जल शक्ति मंडल नालागढ़ में जमा करने हेतु सुनिश्चित करें। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भर्ती सूचना का प्रसारण रोजगार समाचार के माध्यम से करवाने का आग्रह किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। एक बार आपको फिर बता दिया जाता है कि पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद, मल्टीपर्पस वर्कर के 25 पद, कुल 40 पदों को भरा जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 तक साय 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ में जमा करने हेतु सुनिश्चित करें। उक्त भर्ती सूचना का प्रसारण रोजगार समाचार के माध्यम से करवाने का आग्रह किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया
1: FM एंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि को 8 बजने को है। श्रोताओं लीजिए सुनिए मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस। और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए ये भक्ति रचना।

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए देशभक्ति गीत।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत

0: करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
5: डेब्री फ्री मिशन मैनेजमेंट सिस्टम।
0: विदेश राज्य मंत्री

0: कीर्तिवर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। काल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।

0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, नीलेश मिश्र एक प्रसिद्ध भारतीय गीतकार, पत्रकार, लेखक और कहानीकार हैं और उन्हें यादों का इडियट बॉक्स जैसे रेडियो शो के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वे गांव कनेक्शन के सह संस्थापक और एडिटर इन चीफ भी हैं।

श्रोता, नीलेश मिश्रा ने बॉलीवुड फिल्मों में गीत लिखने के अलावा कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें याद शहर और द एंड सबसे प्रमुख हैं, और उन्हें उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए 2 बार प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिल चुका है।

0: एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब कार्यक्रम चर्चा का विषय है, आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: चर्चा का विषय है।
2: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
4: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
3: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
4: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती है। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग

0: पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा?
0: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
1: जी जी।
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आएं, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि 2 प्रक्रिया है कि

0: थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी,
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
0: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहाँ भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से

0: बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आए, ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरू, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से मेरा हाथ नहीं है
1: जी,
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हमको बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। तो मेरा शॉट पुट जैवलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देखते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जैवलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल था, उसमें से 16 गोल्ड, सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ, जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़ा लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोचती थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच्चा बहुत अच्छा लगा
1: जी। बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया, साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग

0: वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं, तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
1: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है?
1: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
1: राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इंप्लीमेंट देम इन रियल लाइफ, डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट। But right now I am just focusing on building the solutions, and as of now I am trying to focus on my studies also as I am a 10th grader this year.
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
1: It was something that I never dreamed of, and even today आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया, बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। मम से रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ, चार पाँच महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, फिर मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ कैन डू, यहाँ सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, इसलिए मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा, और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन मिल जाता है सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे मैं सलाह देता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया, काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो, तो

0: इकट्ठे मिलके फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हमने, हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था, तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे, तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पबीर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया, तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल,
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ, तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत
1: जी,
2: का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
3: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉलिसी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है।

0: लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
0: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को है, डीजे प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत।

उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

फिल्म असली नकली में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़, धुन बनाई है शंकर जय की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है चित्रलेखा और गीत को संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

चित्र पर संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा हुआ। संगीतकार हैं SD वर्मन और फिल्म का नाम है गाइड।

चित्र पर संगीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर

गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।